0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगु विल्लालर इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालास फारकश को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ

0: के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 99682-919888 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 977-98513-16807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधि मंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और

0: सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्स पर एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
2: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10,00,000 टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45,00,000 टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में CNG के मूल्य में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में CNG की कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित CNG कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
3: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता NYOVNG को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं।

राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमरीका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत। अमरीकी

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, Musically Yours.
1: म्यूजिकली योर्स कैसे हैं दोस्तों, सुबह के 8:40 हो चुके हैं और मस्त मुंबई में मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। और आज का दिन है खास, 29 अगस्त शनिवार का दिन है और आज ही के दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दिल का फसाना मैं बस बात करने वाली हूं एक जानी मानी हस्ती की जिन्होंने हॉकी के खेल को भारत के खेल के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। और आज का जो स्पोर्ट्स डे है हम भारत के सभी भारतीय सारे खेलों को डेडिकेट करेंगे और बहुत दिलचस्प बात करने वाली हूँ इन गानों के साथ। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम सिर्फ खेल की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि उस जज्बे की बात करेंगे जो हमें गिरकर फिर उठना सिखाता है, हार के बाद फिर कोशिश करना सिखाता है, और जीत से भी ज़्यादा हमें मेहनत की कीमत समझाता है। आज की सुबह की शुरुआत एक सलाम के साथ करते हैं उन खिलाड़ियों को जिन्होंने देश के लिए मैदान पर पसीना बहाया है, उन बच्चों को जो आज भी किसी छोटे से मैदान में बड़े सपने देख रहे हैं, और उस खेल भावना को जो हमें सिखाती है मैदान कोई भी हो, मुकाबला किसी से भी हो, असली जीत है अपना बेस्ट देना।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.
1: मस्त मुंबई में आप हैं मेरे यानी कि लक्ष्मी के साथ 107.1 MHz FM Rainbow आप सुन रहे हैं. और अब बात करते हैं उस हस्ती की जिसके नाम के बिना भारतीय खेलों की कहानी अधूरी है. मेजर ध्यानचंद, एक ऐसा नाम जिसने हॉकी को सिर्फ खेला नहीं बट एक आर्ट बना दिया, एक कला बना दिया. वैसे कहानी कहाँ से शुरू करूँ? काफ़ी सारी चीज़ें आप जानते हैं कि इलाहाबाद में जन्मे ध्यानचंद भारतीय सेना में भर्ती हुए और यहीं से उनकी हॉकी यात्रा शुरू हुई थी. उनका जो बोल सकते हैं ना कि गोल्डन अचीवमेंट पीरियड 1928-32, 1936 लगातार 3 ओलंपिक्स और तीनों में गोल्ड मेडल. अब इस हस्ती की मैं सिर्फ गोल्ड मेडल्स की बात नहीं करने वाली, एक ऐसा प्लेयर या कह सकते हैं एक ऐसी कहानी उस दौर में कि जब खेल आज की तरह चमक दमक वाला नहीं होता था, वो तब एक पेशा भी नहीं होता था, प्रोफेशन भी नहीं होता था. जब खिलाड़ी मैदान पर उतरता था तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत होती थी, उसका हुनर होता था और देश का नाम होता था. तो आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताने वाली हूँ इन गानों के साथ. कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, दिल से दिल तक.
2: अरे, अरे, ए,

0: मन की बात
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
0: रविवार सुबह 11 बजे
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
0: इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण FM गोल्ड और उर्दू सर्विस की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से,
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
0: मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा।
1: मन की बात का अंग्रेजी भाषा में प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल 102.6 MHz और राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर पर रात 8 बजे।
0: याद रखिएगा रविवार सुबह 11 बजे
2: मन की बात।

कैसे हैं दोस्तों, 9:11 हो चुकी है और राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं बात कर रही हूँ मेजर ध्यानचंद की। देखिए दोस्तों, दिल पे हाथ रख के बिल्कुल ऑनेस्टी से गूगल मत करिएगा, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। आप मुझे बताइए ध्यानचंद का असली नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद का असली नाम क्या है। दिल पे हाथ रख के मैं आपको विश करती हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ गूगल मत करिए, अगर पता है तो मुझे मैसेज कीजिए बिल्कुल 8657661071 पर। और बिलीव मी, बहुत ही दिलचस्प कहानी बताने वाली हूँ उनके नाम के पीछे की, तो गूगल मत करिएगा। और अगला गाना सुनिए, कीप लिसनिंग टू FM रेनबो।

वेल दोस्तों, हम सफ़र, हम सभी हम सफ़र हैं। मस्त मुंबई में मैं बात कर रही हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस पर 9:22 हो चुके हैं और मैंने आपसे पूछा, दिल पे हाथ रख के प्लीज़ गूगल मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट की थी मैंने आपसे। तो पंकज मोहर जी और फिरोज सिंगनपुरिया जी, उन्होंने तुरंत मैसेज कर दिया कि दिल से नहीं मालूम है, और बाकी सारे जो दोस्त थे उनके मैसेज आए मुझे पूरे नाम के साथ, पर क्योंकि आपने इतना टाइम लिया तो मैं मान लेती हूँ कि आपने ज़रा सी चीटिंग ज़रूर कर ली होगी, क्योंकि वेर इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास सोर्स है और क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आप खुद को रोक नहीं पाते। वेल यस, ध्यान सिंह उनका सही नाम है। इस महान खिलाड़ी को ध्यानचंद कैसे बने वो ध्यानचंद, उस नाम के पीछे ये बहुत खूबसूरत कहानी है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और यस, अभी वापस फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गूगल मत करिएगा, मैं वो कहानी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ।

9:32 हो चुकी है और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि दोस्तों जो कहानी बताने वाली हूँ गूगल मत करिएगा, और हमारे लिसनर रंजन जी कहते हैं किसी से सुनी हुई बातें ज़्यादा अच्छी लगती है, गूगल क्यों करना, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बताने जा रही हूँ कहानी कि किस तरह ध्यान सिंह जो हमारे मेजर ध्यानचंद है हॉकी प्लेयर, वो ध्यान सिंह से ध्यानचंद कैसे बने। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्योंकि वो सेना में थे तो दिन भर बाकी अपने सारे साथियों के साथ वो दिन भर अपनी ड्यूटी करते थे। ड्यूटी करने के बाद जब बाकी सारे जवान आराम करने चले जाते थे तब एक जवान हॉकी स्टिक लेकर मैदान की तरफ निकल पड़ता था। और क्योंकि ये बात तकरीबन मान लीजिए कि 100 साल पहले की मैं कर रही हूँ, तो रात का अंधेरा था, मैदान पर रोशनी या कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, और ये वो वक्त था जब खेल को एक प्रोफेशन नहीं माना जाता था, एक शौकिया तौर पे खेला जाता था ऐसे कह सकते हैं, और कोई फैसिलिटी नहीं। तो उस वक्त अगर दिन में ड्यूटी की है तो आपके पास वक्त बचता है सिर्फ रात का, आपको प्रैक्टिस करनी है, तब रोशनी होती नहीं थी। तो तब क्या करते थे मेजर ध्यानचंद, वो इंतज़ार करते थे कि चांद निकले तो उसकी रोशनी में वो प्रैक्टिस कर सके। अब मुझे लगता है कि आपने कहानी का अंत जो है और ये नाम कैसे बदला वो आपने गैस कर ही लिया होगा। तो क्योंकि वो रात में चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे सो उनके साथी उन्हें चांद कहने लगे, बस हिंदी में चांद यानी कि इंग्लिश में मून, और फिर ध्यान सिंह बन गए ध्यानचंद। अब ये नाम हॉकी के इतिहास का सबसे चमकता हुआ नाम है, है ना दिलचस्प कहानी। वेल, बने रहिए और बातें बाकी है। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

दोस्तों मस्त मुंबई में राष्ट्रीय खेल दिवस पर आपको मुझे आपके साथ ये कहानी शेयर करनी है, और बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है और खेल जगत से ही है। कहानी ये है कि 1998 में माँ ने भारत के लिए हॉकी विश्व कप खेला था, और 28 साल बाद यानी कि 2026 में उसी माँ के बेटे ने भारत की जर्सी पहनकर हॉकी विश्व कप में पार्टिसिपेट किया। मैं बात कर रही हूँ प्रीतम रानी सिवाच और उनके बेटे यशदीप सिवाच की। ये कहानी सिर्फ एक माँ और बेटी की कहानी नहीं है, पर यह कहानी है विरासत की, सपनों की और उस जुनून की जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाती है। वेल, राष्ट्रीय खेल दिवस पर हमने खेलों की बात की, और आपको पता है कि अब इस वक्त लाइक 100 साल पहले खेल को खेल एक शौक माना जाता था, या फिर ऐसे कहिए कि लोग शायद ऐसे कहते कि टाइम पास क्यों करना है। पर अब इस मॉडर्न टाइम में ऐसे ऐसे खेल हैं जो हमें पता भी नहीं है और एक प्रोफेशन, और एक कह सकते हैं कि ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन बन गया है। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे खिलाड़ियों को और फ्यूचर प्लेयर्स को कि जो अभी भी यू नो, बचपन में अभी मैदान में बस ऐसे कह सकते बेबी स्टेप ले रहे हैं। वेल, हमारे गाने और हमारी बातें जारी रहेगी। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, दिल से दिल तक।

वेल दोस्तों, मस्त मुंबई में बस एक आखिरी गाना सुनवाने वाली हूँ। और जब खेल जगत की और खेल दिवस की बात कर रहे थे तो हमारे एक लिसनर ने बहुत प्यारा सा मैसेज लिखा है इनफैक्ट, कि पहले लोग बोलते थे पढ़ोगे लिखोगे तो होंगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब, पर अब खेल कूद पढ़ाई के जितना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और ये बात बहुत सच्ची है। काफ़ी सारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि जो बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है इसीलिए उनको मैदान में भेज देते हैं, और बच्चों को खेलना अच्छा ही लगता है अगर उन्हें ऑप्शन दिया जाए तो, है ना। बस इसी के साथ मस्त मुंबई का ये आखिरी गाना सुनवाने जा रही हूँ। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे समाचार और 10:02 पर नमस्ते भारत में फिर से आपसे मुलाकात होगी। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल. प्रस्तुत है इस वक्त के मुख्य समाचार. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है. हालांकि तमिलनाडु के 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए. कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर लौट रहे महाराष्ट्र के 37 श्रद्धालु कल काठमांडू के लिए सुरक्षित रवाना हुए. नेपाल और तिब्बत में आई भीषण बाढ़ के कारण ये श्रद्धालु तिब्बत के सागा में ही फंस गए थे. सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे. उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है. अंत में खेल जगत से, दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका का सामना आज संयुक्त अरब अमीरात से होगा. मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. समाचार समाप्त हुए.

10:08 हो चुकी है दोस्तों, और नमस्ते भारत में मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ। और आज शनिवार है और नमस्ते भारत में मेरा मन कर रहा है कुछ हटके बात करने का। दोस्तों कल राखी थी और मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों ने अपने परिवार के साथ अच्छे से ये त्यौहार सेलिब्रेट किया होगा। और आपको पता है पिछले ही दिनों में कि एक राखी की एड को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, पर मैं बताना चाहूँगी कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, किसी ने सराहा है उस जेस्चर को और किसी ने टीका की है। वेल, मैं यहाँ पे बात करना चाह रही हूँ कुछ और ही। आज परिवार बदल रहे हैं, संयुक्त परिवार छोटे हो रहे हैं, न्यूक्लियर परिवार बढ़ रहे हैं, एक बच्चे वाले परिवार भी बढ़ रहे हैं और कई लोग तो अकेले ही रह रहे हैं। तो ऐसे में

घर में एक नया सदस्य आ रहा है, चार पैरों वाला। वो कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, या कोई भी पालतू एनिमल हो सकता है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या हमें पेट रखना चाहिए, इसे थोड़ा बड़ा सवाल करती हूँ, क्या पेट हमारा परिवार बन सकता है? क्या परिवार सिर्फ वो है जिससे हमारा खून का रिश्ता है, या फिर परिवार वो है जिसके साथ हम अपना अकेलापन बांटते हैं, जिसकी आवाज़ से घर में रौनक आती है और जिसके बिना घर घर जैसा नहीं लगता। बात करेंगे बदलते परिवार की। आप मुझसे शेयर कीजिए कि क्या आपका पेट, अगर आपके पास है तो, सचमुच आपके परिवार का हिस्सा है या नहीं है। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो 107.1 MHz, दिल से दिल तक।

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

वेल दोस्तों 10:20 हो चुके हैं और नमस्ते भारत में मैं बात कर रही हूँ बदलते परिवार की, परिवार की परिभाषा की और बदलते वक्त की। और हम आपके हैं कौन फिल्म से मैंने आपको ये गाना सुनाया और इस गाना सुनाने के पीछे एक वजह है। वैसे बता दूं कि हम तो आज बात कर रहे हैं कि क्या पेट हमारा परिवार हो सकता है। मॉडर्न टाइम्स परिवार बदल रहे हैं पर भाषा तो मेरे ख्याल से बस शब्द इधर उधर हो रहे हैं, बाकी इश्यू तो सेम ही है। ठीक है, सो 1994 में फिल्म आई थी हम आपके हैं कौन, और उस परिवार का सबसे प्यारा क्यूट छोटा सा जो सदस्य था वो था एक डॉग। और इस फिल्म के बाद आप मानेंगे नहीं इतने सारे भारतीय घरों में वो फ्लफी वाइट डॉग दिखने लगा था। और बहुत सी फिल्मों में तो 90s की बात कर रही हूँ, बहुत सी फिल्मों में पेट एक कंपेनियन, एक फ्रेंड के तौर पे दिखाया जाता था, एक कैरेक्टर बन गया था। मेरा सवाल आपसे ये है, बिना गूगल किए या अपनी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक किए, मुझे यकीन है कि इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर पता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि क्या पेट आपका परिवार हो सकता है। और जैसे ही मैंने पेट बोला तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले हम आपके हैं कौन परिवार का ये जो क्यूट छोटा सा वाइट डॉग है वो दिमाग में आया होगा। सो आपको मुझे ये बताना है कि इस डॉग का नाम क्या था, है ना इंटरेस्टिंग। वेल आप मुझे बताइए और मैं अगले दो गाने आपके लिए बजा रही हूँ। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

नमस्ते भारत में, मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या पेट परिवार हो सकता है। आपको पता है कि अगर आज बहुत सारे घरों में पेट पाए जाते हैं, अगर आप उनसे पूछे कि उनका नाम क्या है, आपको ज्यादातर जवाब मिलेगा ब्रूनो, सिम्बा, लियो, बेला। लेकिन एक दौर था 90s का, वो दौर जब हम आपके कौन रिलीज हो चुकी थी, और उसके बाद वाला दौर जब बहुत सारे घरों में एक ही नाम सुनाई देता था, टफी। जी बिल्कुल, मैंने आपसे सवाल पूछा कि हम आपके कौन फिल्म में जो डॉग है उसका नाम क्या था, और रोहित सिंह चौहान दिल्ली से, नौरात वीरेंद्र घटोल अकोला से, आकांक्षा मनोज सिन्हा अहमदाबाद से, वैदेही रितेश शेट्टी मलाड से, सब ने टफी का नाम दिया। बिल्कुल, तो फिल्म में टफी सिर्फ एक डॉग नहीं था, वो एक परिवार का हिस्सा था, सबके साथ खेलता था, क्रिकेट मैच में अंपायर भी बनता था, और कहानी के सबसे इम्पॉर्टेंट मोड पर वही परिवार को एक साथ लाने में भूमिका निभाता है। फिल्म इतनी फेमस है आज भी इतनी फेमस है, पर इस फिल्म की जब सब लोगों ने फिल्म देखी उसके बाद इंडियन स्पिट्स और पोमरेनियन, ये जो दो डॉग की ब्रीड है, उसमें इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, और साथ साथ नाम टफी भी, सबके घरों में एक ही नाम होता था। तो सोचिए, कभी कभी एक फिल्म सिर्फ हमें एंटरटेन नहीं करती, वो हमारे घरों को भी बदल देती है। शायद टफी ने हमें पहली बार बड़े पर्दे पर यह महसूस कराया कि घर में चार पैर वाला कोई सदस्य भी सिर्फ पेट नहीं, परिवार हो सकता है। वेल, कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, दिल से दिल तक।

अब क्या कहें, बस मैं समाप्ति की ओर जा रही हूँ। मैं नमस्ते भारत में बात कर रही थी, क्या पेट हमारा परिवार हो सकता है। यू नो 90s की फिल्मों की बात की और एक मज़ेदार बात ये करती हूँ, आजकल की फिल्मों में, अभी हाल ही की फिल्म में शायद हमारे बदलते रिश्तों की तस्वीर भी दिखाई देने लगी है। अभी 2026 की ही बात कर रही हूँ, एक फिल्म आई है ओ माई डॉग। कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं है, एक बच्चा अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ एक कुत्ता अपने गुम हुए इंसान को ढूंढ रहा है। यानी कहानी में सवाल ये नहीं है कि कुत्ता किसका है, सवाल ये है कि किसे किसकी ज़रूरत है ना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, ये आखिरी गाने आपको सुनवाने जा रही हूँ। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर FM रेनबो और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत

मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी। श्रीमती सीतारमण निवेश के अवसरों को लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। और समाचार में आगे, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उपनगरों में अगले 3 से 4 घंटों के दौरान आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। विभाग के अनुसार इस दौरान मुंबई के आसपास के पालघर, पुणे, ठाणे और रायगढ़ में भी मौसम साफ रहने की संभावना है। और समाचार के अंत में, हंगरी में आयोजित PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने घरेलू दावेदार बालाज फॉर्क्स को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता NJOBNG को और सेमीफाइनल में अपने ही देश के वीर चोटरानी को हराकर जीत दर्ज की। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रिक्वेंसी पर।

सारी जियाओं के लिए ये था गाना, और आप सबके भी लिए जो जिया नहीं है लेकिन जीना चाह रहे हैं। हाय हाय, सैटरडे की सुबह 11 से 12 ब्रेक फ्री ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गई हूँ शर्मीन संग। अगर आप शामिल हो गए हैं तो हाजिरी लगाइएगा 8657661071, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 107.1 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। हैप्पी वीकेंड, और जब तक है जहाँ से सुना आपने ये गाना, नीति मोहन गा रही थी, रैप किया था सोफिया अशरफ ने, गुलजार साहब ने इसे लिखा, एआर रहमान की कॉम्पोजिशन थी। और सेल्फ लव बहुत जरूरी है, ठीक है, जब तक आप कहते हैं ना खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे आप किसी और से प्यार कैसे करेंगे। लेकिन खुद से प्यार करना और अपनी जो आपके पास चीज़ें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंसान के पास जिसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे पजेसिव हो जाता है, तो आज हम ब्रेक फ्री में बात करने वाले हैं इस माइन मेंटालिटी की। मेरा इतना पजेसिव सा वर्ड है ना, ये अपने आप में ही माइन, बचपन से ही ये कुछ बच्चों को आदत भी रहती है, और मतलब छोटे होते हैं ये मेरा खिलौना है, ये मेरे चॉकलेट्स हैं, ये मेरा रूम है, और बड़े होते होते लिस्ट बढ़ती जाती है, माई हाउस, माई मनी, माई सक्सेस, माई रिलेशनशिप्स, माई टाइम। हमारी दुनिया काफ़ी हद तक इस एक छोटे से वर्ड के अराउंड बिल्ड होती रहती है, और वो है माइन। लेकिन कभी सोचा है जो कुछ हम माइन कहते हैं उसमें से एक्चुअली कितना हमारा है? क्या हम सच में चीजों के ओनर्स हैं या सिर्फ कुछ वक्त के लिए उन चीजों की कस्टडी हमारे पास है? आज के ब्रेक फ्री में बात करते हैं इसी माइन मेंटालिटी से, थोड़ा सा ब्रेक फ्री होने की। कब तक कहते रहोगे मेरे जैसा कौन यहाँ, 10/10 कैसे मैं किसी को दे दू 10/10? दे दो, तुम भी 10/10 हो, और हो सकता है सामने वाला शायद 10/10 से भी ज्यादा हो, है ना? तो मानना नहीं चाह रहे, इम्पॉसिबल लग रहा है तुमको ये प्यार, इम्पॉसिबल से सुन रहे हैं आप ये गाना। महुआ कामत, अनुष्का मनचंदा, नरेश कामत की आवाजें हैं, अन्विता दत्त ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान की कंपोजिशन।

सिर्फ मेरी ये जो मेंटेलिटी है उससे थोड़ा सा ब्रेक फ्री होने की। ओनरशिप हमें सिक्योरिटी देती है, बिल्कुल सही बात है। जब हम कहते हैं कि ये मेरा है तो उसके साथ ना एक अटैचमेंट भी आ जाती है। हम चीज़ों को सिर्फ यूज़ नहीं करते, उनसे अपनी आइडेंटिटी जोड़ देते हैं ना। मेरा घर अच्छा है तो मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी बताती हैं, मेरी अचीवमेंट्स मेरी वर्थ डिसाइड करती है। और फिर हम प्रोटेक्ट करने लगते हैं इन चीज़ों को और उनको जमा करने लगते हैं। कभी कभी उन चीजों को भी पकड़ कर रखते हैं जिनकी हमारी लाइफ में जरूरत ही खत्म हो चुकी होती है। शायद फ्रीडम का एक मतलब ये भी है कि अपनी आइडेंटिटी को उन चीजों से अलग करना जो हम पजेस करते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सिर्फ मटेरियल थिंग्स को माइन नहीं कहते, और कौन सी चीजों को माइन कहते हैं। तब तक आप सोचिएगा जब मैं ये गाना प्ले करूंगी, आई एम द बेस्ट। ये भी एक मेंटेलिटी होती है लोगों की, माइन का ही एक अलग वर्जन है। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से आएगा ये गाना। अभिजीत गाएंगे, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा, माफ कीजिएगा जतिन ललित की कॉम्पोजिशन। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: मन की बात
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
0: रविवार सुबह 11 बजे
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
0: इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण FM गोल्ड और उर्दू सर्विस की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से,
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज DD भारती DD इंडिया और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
0: मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा।
1: मन की बात का अंग्रेजी भाषा में प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM रेडियो चैनल 102.6 MHz और राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर पर रात 8 बजे।
0: याद रखिएगा, रविवार सुबह 11 बजे
2: मन की बात।

वाजिद की आवाज में सुना आपने ये गाना तेवर इस फिल्म से। सुपरमैन साजिद कौसर मुनीर दानिश साबरी ने मिलकर इसको लिखा था, साजिद वाजिद की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। और ब्रेक फ्रीज प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं ये जो मेरा मैं माइन इस मेंटेलिटी से आजाद होने की, ब्रेक फ्री होने की। और जैसे कि मैंने कहा कि हम सिर्फ मटेरियल थिंग्स को माइन नहीं कहते, हम कहते हैं मेरी ओपिनियन, मेरी आइडियोलॉजी, मेरा वक्त, मेरी स्टोरी। और जब कोई इनमें से किसी चीज को चैलेंज करता है तो हमें लगता है जैसे उसने हम पर अटैक कर दिया हो। मे बी बिकॉज वी हैव कंफ्यूज्ड हैविंग समथिंग विथ बीइंग समथिंग, है ना। मेरी ओपिनियन बदल सकती है, फिर भी मैं वही इंसान हूँ। मेरा करियर बदल सकता है, मेरी स्टोरी ख़त्म नहीं होती फिर भी, ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं है तो भी मेरी वैल्यू कम नहीं होती। कभी कभी माइंड से ब्रेक फ्री होना एक्चुअली जो है ये कहना है कि मैं हूँ जो हूँ, मैं यही हूँ, है ना, और मैं बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं हूँ। ये जो एटीट्यूड है इससे ब्रेक फ्री होना भी है। और फिर एक और ब्यूटीफुल थॉट आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे कुछ देर बाद, लेकिन वो कब, हाँ जी आपको बता दें 11:30 बजे दिल्ली से रिले आएगा, स्टम्प्ड प्रोग्राम आएगा, वो चलेगा 15 मिनट के लिए। फिर 11:45 को ब्रेक फ्री लेकर मैं दोबारा से हाजिर हो जाऊंगी। हमारी बातों को, गानों को कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ मेरा माइंड और ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसकी बात आती है, तो ये फिल्म तो भैया सबसे पहले दिमाग में आती है। इतना पॉजिटिवनेस एक ही फिल्म में डाल दिया था। एनिमल से आ रहा है ये गाना, हर्षवर्धन रामेश्वर की कॉम्पोजिशन। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

हाँ जी, मैं हीरोइन हूँ। ये हीरोइन फिल्म से सुना आपने गाना। अदिति सिंह शर्मा की आवाज़ थी, संजय चहल ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। ब्रेक फ्रेज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को लेकर पजेसिव हो जाते हैं। माइंड माइंड ये जो थॉट है ना, उससे ब्रेक फ्री होने की आज हम बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा था पिछले लिंक में, एक ब्यूटीफुल थॉट ये भी आता है कि क्या हो अगर किसी चीज की असली कीमत उसे अपने पास रखने में नहीं बल्कि इस बात में हो कि वो किसी और के लिए क्या बन सकती है। एक एग्जांपल लें कि एक बुक है जो आपके शेल्फ पर बस डस्ट कलेक्ट कर रही है, ठीक है, किसी और के लिए नॉलेज बन सकती है। आपका वक्त किसी लोनली इंसान के लिए कंपेनियनशिप बन सकता है। आपकी नॉलेज किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो शायद ये जो उदारता का मतलब है ना, वहाँ हमेशा ज़्यादा होना नहीं, ज़्यादा देने में भी है कि आप किसी को कितना अपनी नॉलेज देते हो, है ना। कभी कभी बस खुद को से ये सवाल भी पूछना आता है कि जो मेरे पास है क्या वो सिर्फ मेरा है। और इसका एक जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर हमें एक ऐसी डोनेशन से भी मिलता है, और वो है आई डोनेशन। हाँ जी, सोचिए हमारी आंखें कितनी पर्सनल है ना, इनमें जुड़ी हैं हमारी मेमोरीज, हमारे फेवरेट फेजेस, सनसेट्स, किताबें, कलर्स, हमारी पूरी विजुअल दुनिया। फिर भी हमारे जाने के बाद हम अपनी आंखों के कॉर्नियाज डोनेट करके किसी और को देखने का मौका दे सकते हैं, है ना। और यहाँ माइंड का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। जो आंखें मेरी थी वो किसी और के लिए दुनिया का एक नया दरवाज़ा बन सकती है। शायद इसीलिए गिविंग का सबसे ब्यूटीफुल फॉर्म है, जहाँ आपके पास कुछ रह नहीं जाता लेकिन आपकी जेनरोसिटी किसी और की ज़िंदगी में रह जाती है हमेशा के लिए। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आई डोनेशन से जुड़े मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को दूर करना और डेथ के बाद आई डोनेशन के लिए लोगों को इंस्पायर करना इस अभियान का हिस्सा है। और इसी के साथ ब्रेक फ्री को यहीं रोकने का वक्त हो चला है। आपको बता दें कि 12 बजे आप हिंदी में न्यूज हेडलाइन सुनेंगे और उसके बाद 12:02 पर म्यूजिक कैफे ओपन हो जाएगा, तो वहां जरूर आइएगा। और जहां पर जैसे उन्हें की हम बात कर रहे थे, मेरा मेरी चीज, इस तरह की थिंकिंग, सो एक फिल्म और उसका गाना याद आता है, डर फिल्म। उदित नारायण गाएंगे इस गाने को, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा, शिव हरी की कॉम्पोजिशन। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो। समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मिसाइल ये मिसाइल कंधे से दागी जाती

है। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमरीकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कल कहा कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच महाराष्ट्र के 100 पर्यटक जो तिब्बत में फंसे थे, उन्हें बिहार के रास्ते लौट आने की सुविधा मिली है। 100 यात्रियों को लेकर एक विशेष रेलगाड़ी आज सुबह 7:30 बजे बिहार से रवाना हो गई। और समाचार में आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और समाचार के अंत में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रिक्वेंसी पर।

क्या बात है, इतना खूबसूरत गाना और ये खूबसूरत आवाज़ किशोर दा की आपने सुनी, और इसी आवाज़ इसी खूबसूरत गाने के साथ शुरुआत हो गई है म्यूज़िक कैफ़े की। नीरज ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की कॉम्पोजिशन। प्रेम पुजारी से सुना आपने ये गाना। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। और आज म्यूज़िक कैफ़े ने अपना ठिकाना कहाँ बदल दिया है भाई, कहाँ है आज हमारा ये कैफ़े? आज न कोई शहर के बीचों बीच वाली कैफे की खिड़की है, ना बाहर ट्रैफिक का शोर है। आज ना हमारा कैफे एकदम खुली हवा में है, खूबसूरत से पिकनिक स्पॉट पर, क्योंकि सैटरडे है ना। सामने हरी हरी घास, आसपास पेड़ों की छांव, हल्की सी हवा, और कैफे की टेबल पर रखी है कुछ गर्मा गर्म चीजें, ठंडे ड्रिंक्स, और आज की सबसे जरूरी चीज म्यूजिक की हमारी प्लेलिस्ट। और चूंकि आज सैटरडे है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो कैफे का मूड भी थोड़ा रिलैक्स्ड है, या कोई जल्दी में कॉफी खत्म करके उठने वाला नहीं है। तो आइए अपनी सीट संभालिए, क्योंकि अगले एक घंटे के लिए म्यूजिक कैफे यहीं इसी खूबसूरत पिकनिक स्पॉट से शुरू होने वाला है, और आपका जो साउंड ट्रैक है सैटरडे का वो भी यहीं से हम प्ले करेंगे। और क्योंकि मैंने आज पिकनिक स्पॉट चुना है हमारे म्यूजिक कैफे के लिए, है ना, पिकनिक की बात आती है तो ये गाना खुद ब खुद हमें याद आ जाता है। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, हम है राही प्यार के, इस फिल्म से आएगा ये गाना। समीर ने इसे लिखा, नदीम श्रवण की कॉम्पोजिशन।

0: मन की बात
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
0: रविवार सुबह 11 बजे
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
0: इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण FM कोड और उर्दू सर्विस की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से,
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज DD भारती DD इंडिया और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
0: मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा।
1: मन की बात का अंग्रेजी भाषा में प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM रेडियो चैनल 102.6 MHz और राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर पर रात 8 बजे।
0: याद रखिएगा, रविवार सुबह 11 बजे
2: मन की बात।

अलका याग्निक शान की आवाजें, आपने सुना ये गाना, बस इतना सा ख्वाब है इस फिल्म से, और इसे जो है लिखा था गोल्डी बहल श्याम राज ने, आदेश श्रीवास्तव की कॉम्पोजिशन थी। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, म्यूजिक कैफे ये प्रोग्राम चल रहा है हमारा। कैफे आज एक बहुत ही खूबसूरत से पिकनिक स्पॉट पर है, क्योंकि आज सैटरडे है ना। सो वैसे कैफे में बैठकर म्यूजिक सुनने का अपना मजा है ही, लेकिन जब कैफे की खिड़की ही किसी पेड़ों के बीच खुलती हो तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है। जहां आसपास लोग अपने पिकनिक ब्लैंकेट्स पर बैठे हैं, बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, हमारे कैफे में ना एक चीज आज थोड़ी अलग है। आज कॉफी के साथ बैकग्राउंड में कप्स और कन्वर्सेशंस की आवाज कम, और पत्तों से गुजरती हुई हवा की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है, और इसलिए ये गाना भी प्ले किया मैंने, ये हवाएं। एंड ऑनेस्टली ऐसे माहौल में कुछ सॉन्ग जो है ना वो अपने आप थोड़े से बेहतर और थोड़े से बेहतर लगने लगते हैं। आप मतलब जहां आप सुन बैठ के जो गाने सुन रहे हो उसकी एटमॉस्फेयर का भी बहुत ज्यादा असर होता है आपके लिसनिंग एक्सपीरियंस में, है ना। सो जहां भी आप हो आए, खुली उम्मीद करते हैं कि खुली हवा में कहीं बैठे हैं आप, है ना। ये सैटरडे संडे होती है कि आप पूरा हफ्ता जो है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस चलता रहता है, लेकिन सैटरडे संडे कहीं बाहर जाएं, खुली हवा में सांस ले और इस तरह के सवाल करें, क्यों चलती है पवन, है ना। ये सारी चीज़ें सोचने का वक्त हमें वीकेंड पे ही तो मिलता है। न तुम जानो न हम, ये गाना आप सुनेंगे, लकी अली की आवाज़, कहो ना प्यार है इस फिल्म से आएगा ये गाना, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा, राम्या की कॉम्पोजिशन।

वाह, बेमिसाल। मतलब गाना इतना प्यारा था, ये फिल्म बेमिसाल होनी है ना। लता दीदी की आवाज़ ने इसको कुछ और बेमिसाल बना दिया, इस गाने को। आनंद बख्शी साहब के अल्फाज, आरी बर्मन जी की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। म्यूजिक कैफे ओपन है, म्यूजिक कैफे में आप सभी का

स्वागत है। आज हमारा कैफे लगा हुआ है एक पिकनिक स्पॉट पर, क्योंकि सैटरडे है, घूमना फिरना तो बनता है ना। सैटरडे संडे आप भी अपनी फैमिली को लेकर कहीं जाइएगा पिकनिक पर, और कोई ऐसा देखिएगा कैफे, म्यूजिक कैफे ना सही, वैसा वाला कैफे सिर्फ FM रेनबो पर आपको मिलेगा। पिकनिक स्पॉट भी है, तो मेन्यू में जो ना आज सिर्फ कॉफ़ी और म्यूज़िक नहीं है, यहाँ पे स्नैक्स भी हैं, थोड़े से गॉसिप्स भी हो रहे हैं, फैमिली इकट्ठी हुई है तो, और कोई जो है वो अपने घर से पूरा के पूरा टिफिन लेकर आया हुआ है, तो उनको भी वेलकम है, हर तरह के लोगों को हमारे इस म्यूज़िक कैफ़े में जो एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट के पास है, हर किसी को वेलकम है। एक के बाद एक कुछ ऐसे सॉन्ग्स यहाँ हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं जो इस दोपहर के मूड को थोड़ा और कलरफुल बना दें। तो एक और प्यारा सा गाना हो जाए, है ना, इसी इसी टेम्पो में आएगा, इसी तरह का स्लो सा खूबसूरत सा, जावेद अख्तर साहब ने लिखा है, शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन, डोमिनिक सर जो गाएंगे। रॉक ऑन से आ रहा है ये तुम्हारी मेरी बातें।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में सुना आपने ये गाना, शायद लव आजकल 2 से, और इसे कंपोज किया था प्रीतम ने। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप।

और सैटरडे की आफ्टरनून म्यूजिक कैफे लेकर हाजिर हूँ मैं आप सभी के बीच। और हमारा कैफे जो है आज कौन से स्पॉट पर है? आज है एक पिकनिक स्पॉट पर, क्योंकि सैटरडे है तो कई सारी फैमिलीज आई हुई हैं और मैं इस कैफे के बाहर का मंजर आपको बता रही हूँ और कुछ ऐसे ही सूदिंग से ब्यूटीफुल से गाने आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ। आपने वैसे नोटिस किया होगा कि कुछ जगह होती है ना, वहाँ पर म्यूज़िक सुनना और भी अच्छा लगता है। बीच पर कोई अलग गाना जो है वो नॉर्मली आप उसको सुनते हो तो वो फील नहीं देता, लेकिन आप बीच पर जब उसको सुनते हैं तो वो एकदम ही अलग सा महसूस होने लगता है। फिर वैसे ही बारिश में कोई और गाना जो है वो अलग सी फील देता है। और ऐसी खुली हरी भरी जगह जहाँ पर आज हम कैफे से शो कर रहे हैं, यहाँ पे बैठकर कोई हल्की सी धुन सुन लो तो लगता है जैसे दोपहर थोड़ी देर के लिए कुछ और ज़्यादा स्लो हो गई है ना। और अब हमारे कैफे में आफ्टरनून, इस आफ्टरनून शो में वो फेज शुरू हो चुका है जब कोई अपनी कॉफ़ी धीरे धीरे पी रहा है, कोई ग्रास पर बैठा है और कोई शायद सोच रहा है कि मंडे और ज़्यादा दूर हो जाए तो अच्छा है। लेकिन मंडे की चिंता आप अभी फ़िलहाल नहीं कीजिएगा, इस पिकनिक स्पॉट को, म्यूज़िक कैफ़े को और ये जो वीकेंड की वाइब है उसको एन्जॉय कीजिए। और आए आपको सुनाते हैं अगला गाना, जावेद अली गाएंगे इसे, तू ही हकीकत। सईद कादरी ने इसे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन। तुम मिले इस फिल्म से आएगा ये गाना। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

आतिफ असलम की आवाज़ में सुना आपने ये प्यारा सा गाना रेस। इस फिल्म से समीर ने इसको लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन थी। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। म्यूजिक कैफे आज जो पिकनिक स्पॉट पर था, हाँ जी, अब उसको कहीं और शिफ्ट करने का वक्त हो गया है, मतलब कि म्यूजिक कैफे से जाने का वक्त हो गया है। नेक्स्ट टाइम किसी और जगह, किसी और लोकेशन पर हम अपना ये म्यूजिक कैफे जो है वो ओपन कर देंगे, फिर आपने आना है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो सैटरडे की हमने प्लेलिस्ट आपको दी है, इसको आप अपने साथ रखिएगा और वीकेंड को एंजॉय कीजिए। इनफैक्ट अगर आपके पास भी कोई सजेशंस हैं कि हम नेक्स्ट टाइम म्यूजिक कैफे कहाँ पे करें, है ना, सो आप हमें भेज सकते हैं 8657661071 पर, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और ये मैसेजेस से याद आया मुझे, आप लोगों में से कई लोग आज पता नहीं अचानक से क्यों मुझे एक आरजे का पिक्चर भेज रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो मैं हूँ, शर्मीन उनका नाम भी सेम है, और वो कह रहे हैं कि हम आपको फेसबुक पेज पे फॉलो करते हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा फेसबुक पेज है नहीं। इनफैक्ट वो जिनका आपने फोटो भेजा हुआ है वो एक बांग्लादेशी आरजे हैं जिनका नाम भी शर्मीन है। सो या मुझको ये बात क्लियर करनी थी कि मैं वो नहीं हूँ। और आपको बता दें कि अब 1 बजे आप मराठी में समाचार सुन पाएंगे छत्रपति संभाजी नगर से, और उसके बाद 1:05 पर हिट एंड हॉट, ये आपका बड़ा ही चहीता प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जिसमें आपके पसंद के हम गाने प्ले करते हैं। और आज की थीम क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगी उसी आर में, ठीक है, ताकि जो है आप पहले से मैसेजेस न कर दें, क्योंकि होता यूँ है कि फिर कई सारे लोगों के जो सॉन्ग्स हैं वो प्ले होना रह जाते हैं, आप इतना ज़्यादा पहले ही जो है वो मैसेजेस आ जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं वो, जिनकी रिक्वेस्ट हैं वो पीछे रह जाती हैं। इसलिए जब हिट एंड हॉट स्टार्ट होगा उसकी बिल्कुल ही शुरुआत में ही मैं आपको बता दूंगी थीम, और आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी सॉन्ग रिक्वेस्टें भेजनी है। हो गया क्लियर? 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 8657661071। और म्यूजिक कैफे से जाते जाते जहां हमने सारा ही माहौल बना रखा था पिकनिक वाला, है ना, तो हाँ सुनाते हैं आपको ये वाला गाना, रविंद्र रावल जी ने इसको लिखा, SP बाला सुब्रमण्यम, लता दीदी की आवाजें हैं। हम आपके हैं कौन से आ रहा है, ये मौसम का जादू है मितवा।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो. शर्मीन संग शामिल हैं आप. हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम शुरू हो गया है और आपको बता दें जल्दी जल्दी कि आज की थीम क्या है ताकि आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स उस थीम के अकॉर्डिंग हमें भेज सकें. आज है नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो आपने ऐसे सॉन्ग्स रिक्वेस्ट करने हैं जो किसी स्पोर्ट के बारे में हो या किसी ऐसी स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म के बारे में से हो, ऐसी फिल्में जो किसी खेल पर बनी हुई हो, उन फिल्मों के गाने हो या उस गाने में किसी खेल का जिक्र आता हो. ठीक है, समझ गए आप. अपने नाम के साथ उस सॉन्ग को भेज दीजिएगा 8657661071 पर. 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. अभी के लिए शुरुआत करते हैं चकदे के इस गाने के साथ. हेमा सरदेसाई गाएंगी इसे, जयदीप साहनी ने लिखा, सलीम सुलेमान की कॉम्पोजिशन. बादल पे पांव है.

0: मंगल।
1: क्या बात है, मतलब मेरे ख्याल में जितने भी हिंदी सिनेमा में किसी भी स्पोर्ट को लेकर जो गाने बने हुए हैं उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन गाना लिखा हुआ है ये वाला गाना। अगर आप गौर से सुनिएगा कभी, इसके हर हर हर एक वर्ड जो है क्या ही कमाल लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। प्रीतम की बेहतरीन म्यूज़िक दलेर मेहंदी ने क्या ज़बरदस्त गाया है इसे। दंगल फिल्म का टाइटल ट्रैक आपने सुना अशोक पाटिल जी की रिक्वेस्ट पर। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप हिट एंड हॉट इस प्रोग्राम में। मैंने आपसे पूछा है कि आपके ऐसे कोई फेवरेट सॉन्ग्स मुझे सेंड कीजिएगा इस रिक्वेस्ट आर में जो किसी ऐसी फिल्म से हो जहां कोई खेल के बारे में हो या उस गाने में कोई खेल खेला जा रहा हो, क्योंकि आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है। सो इसीलिए हमने आपसे मांगे हैं इस तरह के गाने जहां पे किसी खेल का जिक्र आया हो या वो फिल्म ही किसी खेल के बारे में हो। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें की है मीरा श्रीधर ने भांडुप से, और वो सुनना चाह रही हैं मेरी कॉम से ये वाला गाना जिद्द दिल। विशाल ददलानी गाएंगे इसे। प्रशांत इंगोले ने इसे लिखा, शशि सुमन की कॉम्पोजिशन। बने रहिएगा इसी फ्रिक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

जो जीता वही सिकंदर, इस फिल्म से सुना आपने ये गाना। और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें की थी राकेश माथुर जी ने। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप हिट एंड हॉट में। मैंने आपसे पूछा है क्योंकि आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, तो आपने

से ये स्पोर्ट्स रिलेटेड गाने हम तक पहुंचाने हैं, रिक्वेस्ट करनी है 8657661071, 8657661071, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये गाना आपने सुना उदित नारायण, साधना सरगम, जतिन एंड ललित की आवाजों में। मजरू साहब ने इसे लिखा था, जतिन एंड ललित की कॉम्पोजिशन थी। और एक गाना जिसकी भर भर के आपने रिक्वेस्टें भेजी हैं वो मैं ज़रूर प्ले करूंगी। उस गाने का नाम है चले चलो लगान, इस फिल्म से ओंकार काटकर ने पंढरपुर से, फिर हमें दीपा पालकर ने, फिरोज सिगनपुरिया जी ने, विजेंद्र जी ने अकोला से इस गाने की रिक्वेस्ट की है। और आप सभी के लिए जिनके आज गाने शायद प्ले हो ना पाए तो उनके लिए भी ये गाना हम प्ले करेंगे। लेकिन उससे पहले आए आपको सुनाते हैं पिंटो के रिक्वेस्ट पर आएगा हल्ला बोल करता जा गोल पे गोल। ये आ रहा है गाना धन धना धन गोल, इस फिल्म से, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन, गाएंगे दलेर मेहंदी।

म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप, हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम लेकर दोबारा से हाजिर हो गई हूं मैं। और आए अब शो को दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं उसी गाने के साथ जो न्यूज़ आने से थोड़ा सा ही प्ले हो पाया था। पिंटू की रिक्वेस्ट पर ये गाना आएगा, उसके बाद हम प्ले करेंगे चले चलो, जिसकी रिक्वेस्ट कई सारे लोगों ने की है। ओंकार काटकर ने पंडरपुर से, दीपा पालकर, फिरोज सिगनपुरिया, विजेंद्र जी ने अकोला से, चले चलो लगान से आएगा। लेकिन अभी के लिए पिंटू की रिक्वेस्ट पर दलेर मेहंदी की आवाज़, धन धना धन गोल से आएगा ये गाना।

ए आर रहमान की आवाज़ में सुना आपने ये गाना लगान फिल्म से, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा, श्रीनिवास की कॉम्पोजिशन थी। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल थे आप। हाँ जी, मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन आपकी दो सॉन्ग रिक्वेस्टें हैं वो प्ले किए बिना नहीं जाऊंगी मैं। और जितने भी लोग हमारे साथ 11 बजे से जुड़े हुए थे और बाद में भी जिन्होंने मैसेजेस किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी का। और आज हमने हिट एंड हॉट में आपसे मांगे ऐसे गाने जो फिल्में ऐसी थी जो किसी स्पोर्ट, किसी खेल पर बेस्ड थी, या उन गानों में कोई खेल जो है खेला गया, क्योंकि आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है और एक से बढ़कर एक गाने आप लोगों ने रिक्वेस्ट करे। अब मैं प्ले करने वाली हूँ भाग मिल्खा भाग का टाइटल ट्रैक, जिसकी रिक्वेस्ट हमें की है अजय सखरे जी ने इंदौर से, संदीप कुमार ने, फिर राहुल रेणावीकर ने पुणे से, और आकांक्षा मनोज सिन्हा ने अहमदाबाद से इस गाने की रिक्वेस्ट की है। और हमें मैसेज आया है प्रकाश शिंदे जी का, वो इकबाल फिल्म से आशाएं सुनना चाह रहे हैं, तो वो हम प्ले कर देंगे। बाकी सबके नाम ले लें एक बार फिर से जिनके गाने नहीं प्ले हो पाए लेकिन उनके मैसेजेस आए हैं। और ये दो गाने आप सभी के लिए हैं, पंकज मोहड़, अभिजीत गवानकर और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, मुकेश कश्यप और उनकी फैमिली ने हमें मैसेज किया था, शुभ लक्ष्मी जी का मैसेज आया था, मुकेश वालिया जी ने देहरादून से मैसेज किया था, गणेश मगर जी ने हमें मैसेज किया था, सुनील पाठक जी का मैसेज आया था, और हमें यशवंत जी ने मैसेज किया था। ये मैं उनके नाम ले रही हूँ जिनके गाने प्ले नहीं हुए, और बाकियों के नाम तो मैंने ले लिए हैं आप सभी की सॉन्ग रिक्वेस्टों के साथ। लालगिरी जी का मैसेज आया था और हमें मैसेज किया था जॉन डिकोस्टा और उनकी फैमिली ने, संजय दर्शन जी का मैसेज आया था, मिंटू और उनकी फैमिली ने हमें पंजाब से मैसेज किया था, विक्रम आठवले जी ने मैसेज किया था, हितेंद्र दास जी, मेहर अरोरा ने श्रीनगर से मैसेज किया था, दिग्दर्शन और कविता हमारे साथ जुड़े हुए थे, वैद्य ही जुड़ी हुई थी, दादर से बाबा का मैसेज आया था, प्रमोद चिंचोलकर जी का मैसेज आया था, दिलेश जी ने मैसेज किया था, प्रदीप अनंत कृष्णन जी ने मैसेज किया था, और अंकित का मैसेज आया था हमें, राजेंद्र परमार जी ने मैसेज किया था हमें, और हमें मैसेज आया हुआ था रंजन जी का झारखंड से, राजेंद्र जुठानी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, धनंजय जी ने मैसेज किया था, शुभदा ने मैसेज किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेजेस का। और इसी के साथ आए वो दो गाने प्ले करते हैं जिसका मैंने जिक्र किया है, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए आरिफ लोहार की आवाज में आपको सुनाते हैं भाग मिल्खा भाग का ये टाइटल ट्रैक, प्रसून जोशी ने से लिखा, शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन। अब जा रही है शर्मीन, अपना ख्याल रखें सामीन, हैप्पी वीकेंड।

0: Modi today paid homage to the Indian hockey legend Major Dhyanchand on the occasion of National Sports Day. In a social media post, Mr. Modi said, "Major Dhyanchand's brilliance in Indian hockey continues to inspire generations." Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman today highlighted India's broad-based growth, reform momentum and expanding opportunities for long-term investment in Chicago. The Finance Minister today addressed a high-level business roundtable with leading investors and business leaders. A key focus of the meeting was manufacture in India, for India and for the world, with opportunities across manufacturing, AI and digital, financial services, infrastructure, food processing, defense and advanced technologies. The India Meteorological Department IMD has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Odisha till Monday. Heavy rainfall is also likely to hit Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and parts of northeastern states for the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic, says visit will strengthen strategic partnerships and deepen civilizational ties with Central Asia. Death toll in Nepal flash floods rises to 626, over 2,000 people still missing. India steps up humanitarian assistance. US President Donald Trump announces biggest oil deal with Venezuela. Iranian President Masoud Pezeshkian says Tehran is open to negotiations with Washington but remains deeply cautious. National Sports Day being observed today, Prime Minister Modi pays tribute to Major Dhyanchand and salutes dedication of sportspersons. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall in Odisha for next 2 to 3 days. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
2: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज़्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
1: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
2: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है।

उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच

0: बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है, बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-12-113। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-31-6807 +977-970-910-7500 और +979810326117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86185142-84905। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुनी से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
5: श्री पेजश्कियान ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजश्कियान की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध

0: दोस्ती का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
3: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
4: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
3: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि

की बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मन की बात
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
0: रविवार सुबह 11 बजे
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
0: इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण FM गोल्ड और उर्दू सर्विस की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से,
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज DD भारती DD इंडिया और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
0: मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा।
1: मन की बात का अंग्रेजी भाषा में प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल 102.6 MHz और राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर पर रात 8 बजे।
0: याद रखिएगा, रविवार सुबह 11 बजे
2: मन की बात।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: शानदार शनिवार की शाम है, लेकर प्यार का पैगाम, वो भी जिंदगी के नाम, साथ में आकांक्षा का प्रणाम। आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर 107.1 MHz पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रोग्राम है लव यू जिंदगी, और इस लव यू जिंदगी में प्यार भरी जिंदगी है, हम हैं और आप भी हैं।

0: मन की बात
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
0: रविवार सुबह 11 बजे
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
0: इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण FM गोल्ड और उर्दू सर्विस की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से,
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज DD भारती DD इंडिया और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
0: मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा।
1: मन की बात का अंग्रेजी भाषा में प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM रेडियो चैनल 102.6 MHz और राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर पर रात 8 बजे।
0: याद रखिएगा, रविवार सुबह 11 बजे
2: मन की बात।

दोस्तों, खेलना, खेल, इसे हमारे जीवन से अगर अलग कर दिया जाए तो हमारा जीवन अधूरा सा रह जाएगा। हमारा बचपन तो जीवन से हमारे अलग ही हो जाएगा अगर खेल हमारे जीवन से निकाल दे तो, अलग कर दे तो। बचपन के खेल, संगी साथी, इनसे ही तो हमारा बचपन कितना खिलता है और यौवन संवरता है ना। कभी कभी तो हमारे बुढ़ापे का सहारा भी ये बचपन के संगी साथी बनते हैं। उनका जब साथ होता है एक अलग ही महफिल सजती है। और जो बचपन का साथ होता है तो हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनके स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं, तो वहां दिल खोलकर हम बात कर सकते हैं। उसमें कोई एटिकेट्स नहीं होते हैं, या फिर हम कहते हैं ना कि जैसे ऑफिस के दोस्तों के साथ हम थोड़ा सा कम बोलते हैं या तोल मूल के बोलते हैं, वैसा बचपन के जो साथी होते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता हमारा। इसीलिए तो ये जो बचपन के खेल और खेलगड़ी होते हैं ना, ये इनके साथ रहते हुए हमें सोचना नहीं पड़ता कि मैं ऐसा करूं, ऐसा न करूं, या फिर इस तरह से बात करूं, इस तरह से बिहेव करूं। नहीं, हम जो होते हैं वो हम होते हैं। उस वक्त हमें कुछ बनना नहीं पड़ता किसी बात का, हमें ये एहसास नहीं होता कि अरे ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी तो ये एटिकेट्स में कमी तो नहीं होगी, कुछ गलत तो नहीं होगा। नहीं, हमारे जो बचपन के साथी होते हैं ना,

उनके साथ जब हम रहते हैं तो बच्चे ही बन जाते हैं। और जब ये दिल में बच्चा हो हमारे, तो हमारा ये जीवन है ना बचपन की ओर लौटता है। जब ये जीवन हमारा बचपन की ओर लौटता है तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और डॉक्टर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि

सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कीजिए, लेकिन ये टॉनिक जो है वो बार बार ज़िंदगी में आना चाहिए। यही हमारी जो जिंदा दिली होती है दिल की, इसे ज़रूरी होता है, हमारे लिए ज़रूरी होता है, और जो खुशनुमा हम रहते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है। आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी प्रोग्राम, और कुछ बातें हो रही हैं दिल से दिल तक।

इतने बड़े जहां में दिल को तो अकेला नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर बड़ा ग्राउंड है तो दिल अगर खेलने के लिए मचल जाए तो उसे रोका भी तो नहीं जा सकता ना। वैसे बड़ा ग्राउंड हो और हमारे साथ अगर बच्चे हों तो वो तो मचल ही जाते हैं खेलने के लिए कि खेलना है ग्राउंड में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिल भी मचल जाता है ग्राउंड में खेलने के लिए। वैसे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि सिर्फ बच्चों को या बचपन में ही खेल खेले जाते हैं, और बड़े होकर देश को ओलंपिक में मेडल्स जिताने के लिए इन्हीं खेलों में जान की बाजी लगा दी जाए, ऐसा भी नहीं है। दरअसल खेल कभी भी खेला जा सकता है, किसी भी उम्र में खेला जा सकता है। दरअसल फैमिली या फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ जो हम वीकेंड स्पेंड करते हैं ना, उसमें भी हम कुछ अंडर आर्म क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल, बैडमिंटन समथिंग जैसे खेलों का भरपूर लुत्फ उठाते ही हैं। हाल ही में ऐसा कोई वीकेंड अगर आपने स्पेंड नहीं किया है, प्लान नहीं किया है, तो ज़रूर प्लान कीजिए, क्योंकि जी हाँ, ये भी हमारे जीवन में टॉनिक का काम करते हैं और हमारी ज़िंदगी में कुछ प्यार के पल और भर देते हैं।

0: मन की बात
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
0: रविवार सुबह 11 बजे
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
0: इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण FM गोल्ड और उर्दू सर्विस की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से,
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज DD भारती DD इंडिया और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
0: मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा।
1: मन की बात का अंग्रेजी भाषा में प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल 102.6 MHz और राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर पर रात 8 बजे।
0: याद रखिएगा, रविवार सुबह 11 बजे
2: मन की बात।

आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। प्रोग्राम है लव यू जिंदगी। हम खेल की बात कर रहे थे क्योंकि आज राष्ट्रीय खेल दिन है और खेल जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। बचपन में हम खेलते हैं, यौवन में खेलते हैं, बुढ़ापे में ये खेल हमारी तंदुरुस्ती का राज भी होता है। और एक बहुत ही मज़ेदार और इंस्पायरिंग बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हमारे कॉम्प्लेक्स में ना सीनियर सिटीजन्स का एक बहुत ही जिंदा दिल ग्रुप है। अक्सर इस ग्रुप में ना ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो छोटी छोटी जो है स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं उनके ही बीच में। और खेल, मस्ती, हंसी और सबसे इम्पोर्टेंट ना सेहत से भरी ये कॉम्पिटिशन होती है। उनमें जो है नया जोश ये कॉम्पिटिशन भरती है। जब भी वो ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं ना बहुत ही जोश में होते हैं, बहुत हंसी मजाक चलता रहता है उनका और एक नया उत्साह उनके जीवन में, नई ऊर्जा ये एक छोटा सा कॉम्पिटिशन भर देता है। और वो लोग बहुत उत्साह के साथ वो जो कॉम्पिटिशन है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। सारे जो दोस्त हैं वो मिलके बहुत धमाल मस्ती करते हैं। ये देख के ना मुझे एक बात ज़रूर सीखने को मिलती है कि आप चाहे जिस भी एज ग्रुप में आए लेकिन जो दिल में बच्चा है और बचपन के खेल जो हैं वो आपको सदा एक नई ऊर्जा देते रहेंगे, नई प्रेरणा देते रहेंगे।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आपने ट्यून किया है 107.1 MHz पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, जिसे आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अंदाजे बयां प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेनबो सखी आकांक्षा और कुछ नायाब गजलों के साथ पेश होंगे चंद शेर इस प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं इस गजल के साथ।

गालिब कहते हैं कि हसरत ही रहे तो अच्छा है गालिब, चांद मिल जाए तो दाग दिखने लगते हैं, कुछ ख्वाहिशें कुछ तमन्नाएं अधूरी ही रह जाएं तो ही बेहतर हैं। उनको अगर हम पूरा करने की जिद पर अड़ जाएं ना, तो ये तमन्नाएं पूरी होने के बावजूद भी अधूरी सी

0: मन की बात
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
0: रविवार सुबह 11 बजे
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
0: इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण FM गोल्ड और उर्दू सर्विस की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से,
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज DD भारती DD इंडिया और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
0: मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा।
1: मन की बात का अंग्रेजी भाषा में प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल 102.6 MHz और राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर पर रात 8 बजे।
0: याद रखिएगा, रविवार सुबह 11 बजे
2: मन की बात।

دل امیر تھا اور مقدر غریب تھا، اچھے تھے ہم مگر برا نصیب تھا۔

लाख कोशिश करके भी कुछ कर न सके हम, लाख कोशिश करके भी कुछ कर न सके हम, घर भी जलता रहा और समंदर भी करीब था। आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। प्रोग्राम है अंदाज़े बयां, कुछ बयां हो रहे हैं दिल के दर्द और कुछ चुनिंदा गजलें आपके लिए इस प्रोग्राम में पेश हैं।

अंदाजे बयां प्रोग्राम की ये थी आखिरी गजल। आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। दोस्तों, शाम के ठीक 7 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मराठी में समाचार और 7:10 पर आपके फरमाइशों पर आधारित प्रोग्राम होगा हम तुम। सुनते रहिए एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल से दिल तक जो आपके पहुंचता है और आपकी फरमाइश की हुई गीत भी आपको सुनवाता है, ऐसा मुंबई का एक ही रेडियो चैनल है जो है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। दोस्तों 7:11 हो रहे हैं, हम तुम प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रेनबो सखी आकांक्षा। आपके जो मैसेजेस हैं या यूं कहिए कि फरमाइशें हैं, ये हमें मिलनी शुरू हो गई हैं और मैं लिस्ट ही बना रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी से। तब तक मैं लिस्ट बना लूँ, प्रोग्राम तो शुरू करना है और एक वेरी स्पेशल गीत आज बहुत ही स्पेशल दिन के लिए। क्यों है ये गीत स्पेशल और क्या है आज स्पेशल दिन, वो भी आपको बताएंगे। पहले गीत तो सुन लीजिए।

ये गाना सुन के कुछ आपको याद आ रहा है, आपने ये गाना देखा होगा, जीतू जी और बहुत ही चुलबुली सी लीना जी इस गीत में हैं, और हमजोली फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में। दोस्तों, लीना जी का बहुत ही चुलबुली, बहुत ही

सुंदर लीना चंदावर जी का आज जो है बर्थडे है, और लीना चंदावरकर ये एक नाम सुनते ही आंखों के सामने एक बहुत ही मासूम सा खूबसूरत सा चेहरा आता है, बहुत ही प्यारी सी हंसी, बहुत ही प्यारी सी आवाज़, और ये जो सारे गीत हैं ये बहुत ही प्यारे हैं। तो आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने इस हम तुम प्रोग्राम

कविता जी का मेरठ से, राजश्री और अशोक जोशी जी का विक्रोली से, भूषण सुनावने बाबा जी दादर, उषा और संजय पाटिल जी का मलकापुर से, रश्मि और शार्दुल भारती डोंबिवली से, मेहर और ममता अरोरा श्रीगंगानगर राजस्थान से, फिरोज सिगनपुरिया जी का मुंबई से और राजेंद्र परमार जी का भी हमें SMS आया है। काफ़ी सारी जो फरमाइशें हैं वो आपको सुनवानी बाकी हैं, तो चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं।

हम तुम प्रोग्राम में आपके फरमाइशों पर आधारित ये गाने जो हैं वो आप सुन रहे हैं और एफएम रेनबो चैनल पर ये प्रोग्राम होता है ठीक 7:10 से। हमें जिन और भी श्रोताओं ने एसएमएस भेजे हैं उनकी भी हमने लिस्ट तैयार की है नामों की, उनके नाम बता दें। अरविंद कुलकर्णी इचलकरंजी से, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा गोस्वामी छत्तीसगढ़ से, बलकरण और अंजनी वर्मा छत्तीसगढ़ से ही, हीरामणि और पारसमणि वर्मा छत्तीसगढ़ से ही, निशा सोंदावड़े नागपुर से और उनके बेटे प्रणीत जी ने भी हमें मैसेज किया था, रविंद्र कोड़ापे नागपुर से, मुकेश शीतल काजल कश्यप मुरादाबाद से, हितेंद्र दास असम से, मुकेश वालिया देहरादून से, वैदेही जी ने मुंबई से हमें मैसेज किया है, प्रदीप अनंत कृष्णन दीपा पालकर, विजेंद्र घाटो जी ने अकोला से हमें मैसेज किया है, प्रणव शिंदे, पंकज मोहल जी ने अमरावती से किया है, लीना और मुकुल परांस पे, साथ ही नीलम और अभिषेक ने हमें थाने से मैसेज करके फरमाइशें भेजी हैं। फरमाइशों की लिस्ट भी तैयार है जी, इसलिए बिल्कुल नहीं समय गवाते हैं और अगला गीत आपके लिए तीसरी कसम फिल्म से मुकेश की आवाज़ में।

0: मन की बात
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात
0: रविवार सुबह 11 बजे
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
0: इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण FM कोड और उर्दू सर्विस की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज DD भारती DD इंडिया और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
0: मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा।
1: मन की बात का अंग्रेजी भाषा में प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM रेडियो चैनल 102.6 MHz और राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर पर रात 8 बजे।
0: याद रखिएगा रविवार सुबह 11 बजे
2: मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम तुम प्रोग्राम की एक आखिरी फरमाइश आपको सुनवाना चाहती हूं और इसके साथ, इस गीत के साथ दीजिए आकांक्षा को इजाज़त, लेकिन रहिए हमारे साथ क्योंकि ठीक 8 बजे एफएम रेनबो चैनल पर रॉक विद जॉक प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे मेरे प्रिय मित्र फली और उन्होंने बहुत ही प्यारी सी जो है प्लेलिस्ट

तैयार की है आपके लिए बहुत ही प्यारा सा शो रॉक विद जॉक, ठीक 8 बजे सुनिए फली के साथ। दीजिए आकांक्षा को इजाजत, नमस्कार, और ये है हम तुम प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: मन की बात
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
0: रविवार सुबह 11 बजे
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
0: इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण FM गोल्ड और उर्दू सर्विस की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से,
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज DD भारती DD इंडिया और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
0: मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा।
1: मन की बात का अंग्रेजी भाषा में प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM रेडियो चैनल 102.6 MHz और राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर पर रात 8 बजे।
0: याद रखिएगा, रविवार सुबह 11 बजे
2: मन की बात।

0: That was Whitney Houston over there with her version of Dolly Parton's I Will Always Love You. That's one of the 10 best-selling songs in the history of music. How are you folks doing out there? We were paying tribute to the country pop music legend Dolly Parton, who passed away at the age of 80 this week. Tonight, we're going to be counting down the 100 greatest pop artists of all time. Paul McCartney was number one in the previous list. Is he still number one on this list? Let me tell you straight up, Whitney Houston is in the top 10. Dolly Parton in this list is at number 39. She didn't make the top 20, but you know, it could change with her music going to number one everywhere. Stay tuned. Right now we have, of course, the news coming up in Hindi at 8:45, and at 9 p.m. we have a special program, the Akashwani podcast, that will be playing from 9 o'clock to 9:50, and we'll be back with more fabulous music after that. So stay tuned for our special program, the Akashwani podcast, that'll be playing from 9 p.m. right here on this radio station. You're listening to Akashwani's Rainbow Channel, the number one station in Amchi, Mumbai. Stay tuned for the news right now.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में

0: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
1: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
3: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
5: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है।

0: केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
2: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने B.R. अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
4: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
5: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Namaskar. I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to the Akashwani podcast. इस पॉडकास्ट पर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खास शख्सियत को लेकर आए हैं। कहते हैं ना कि हर चेहरे के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं और हर किरदार के पीछे कई सारे अनुभव होते हैं। तो आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, राइटर हैं, इंजीनियर हैं और आज हमारे गेस्ट भी हैं। इन्होंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को बहुत खूबसूरती से अपनी रियल लाइफ में यूज किया और अपनी कला को और गहरा और निखारा। जी, आज हमारे साथ हैं द वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर निलय मिताश। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच हरप्रीत जी फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन।
1: प्लेजर इज आवर्स। और मैं जरूर पूछूंगी कि किस तरीके से आपने अपनी रियल जिंदगी के अनुभवों को अपनी एक्टिंग में यूज किया, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि कैमरा पर हम सब ने देखा है कि निलय मिताश कौन है, क्या करते हैं। सबको आपने अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन ऑफ कैमरा निलय कौन है?
2: हरप्रीत जी, आपने तो पहला ही क्वेश्चन एक तरह से लाइफ का जवाब मांग लिया। बिकॉज ये जवाब तो मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ कई सालों से कि निलय है कौन। आई मीन निलय मिताश तो मुझे नाम दिया गया है। अगर मेरा नाम मेरे माता पिता ने कुछ और दे दिया होता तो क्या मैं कोई और होता? तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछ दिया है,
1: तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं।
2: हाँ बिल्कुल।
1: सो निलय कहाँ से आते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड रहा, आपकी जर्नी कैसे रही और क्या बचपन से इंटरेस्ट था एक्टिंग में?
2: जी, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आता हूँ। और देखिए, आप छोटे शहर में ना आप ये नहीं सोचते हो कि आप एक्टर बनोगे। एक्टर वर्ड तो यूज भी नहीं होता, हीरो बनोगे।
1: हीरो बनोगे,
2: ये आपके सोच के मच बियॉन्ड है।
1: जी।
2: सो कभी ये नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा या हीरो बनूंगा, पर हाँ फिल्मों से मुझे बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा। मैं हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता था।
1: ओके।
2: और बाथरूम में जाके एक्टिंग प्रैक्टिस करता था।
1: लवली।
2: क्योंकि मैं बाहर नहीं कर सकता था। वहां
1: बाहर करते तो डांट पड़ती।
2: हाँ डांट पड़ती।
1: अच्छा।
2: कर क्या रहे?

0: ओ भाई, ये पढ़ाई करो जाओ, बिकॉज दैट्स वॉट आई थिंक माई माइंड वॉज ट्रेन्ड कि बचपन से पढ़ाई करो,
1: जॉब करो.
0: इंजीनियर तो बनना ही है. इंजीनियर तो आपका मतलब ऑप्शन, अगर आप आईएएस नहीं बनते तब इंजीनियर बनना. सो दैट इज वॉट द मेंटेलिटी वॉज ओवर देयर. सो पर मुझे पिक्चरों से बहुत प्यार था, और मैं बचपन से ही थोड़ा ड्रामेटिक इंसान रहा
1: तो
0: हूं.
1: आप बचपन से एक्टिंग करते थे दरवाजा बंद करके, लेकिन
0: हाँ
1: कभी स्कूल में एक्ट किया या कभी कुछ प्ले में पार्टिसिपेट किया?
0: नहीं, मैं स्कूल या प्ले में पार्टिसिपेट नहीं किया, पर मैं एक्टिंग रियल लाइफ में करता था.
1: रियल लाइफ में
0: रियल
1: करते थे.
0: लाइफ में
1: प्लीज हमें
0: या
1: बताइए कैसे.
0: उधर अपने बिहार तरफ ना, उसको एक्टिंग नहीं कहते थे, नौटंकी कहते थे. आपने सुना होगा ना, बच्चे लोग स्कूल नहीं जाने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाते थे.
1: जी
0: मैं बहाना नहीं बनाता था, मैं बिलीव करता था कि मुझे पेट दर्द हो रहा है.
1: मतलब आप पहले बिलीव करते थे और
0: हाँ,
1: फिर एक्ट करते थे.
0: एक्ट करने की जरूरत ही नहीं. मैं आपको एक बात बताऊं, लोग पूछते हैं एक्ट एक्टिंग कैसे करते हो. एक अच्छे एक्टर को ना एक्ट नहीं करना होता है, दे जस्ट हैव टू लिव अ कैरेक्टर. सो विडंबना ये है कि एक अच्छे एक्टर को अगर सक्सेसफुल होना है, रियल लाइफ में एक्टिंग करना होता है और रियल लाइफ में जीना होता है.
1: तो आप उस एक्सपीरियंसेस को, उन एक्सपीरियंसेस को जीते थे कि
0: जीता था,
1: अभी मेरे पेट में दर्द हो
0: मुझे
1: रहा
0: बिलीव
1: है,
0: होने
1: आपको
0: लगता था.
1: बिलीव होने लगता था.
0: सो उसको अपेरेंटली, मुझे बाद में पता चला कि उसे मेथड एक्टिंग कहते हैं.
1: वाह, तो
0: बट
1: इसमें हम जरूर पूछेंगे आपसे कि क्या एक्टिंग सीखी जा सकती है. लेकिन मैं अभी आपसे पूछना चाहती
0: जी
1: हूँ कि चलिए पेट दर्द का बहाना किया, स्कूल नहीं गए, और
0: हाँ
1: इसके अलावा कुछ ऐसा बड़ा कारनामा किया कि पेरेंट्स को पक्का यकीन हो गया कि आप शायद एक्टर बन सकते हैं.
0: हाँ देखो, उन्हें यह यकीन नहीं हुआ कि मैं एक्टर बन सकता हूं, बट हाँ उन्हें यह यकीन हो गया कि
1: एक्टिंग कर
0: ये लड़का का पढ़ाई में ज्यादा स्कोप नहीं लग रहा
1: सकता
0: है. एक बार मुझे, मैं ना बहुत ही नटखट था, बहुत ही नॉटी था, तो मुझे हॉस्टल में रख दिया गया था. एंड आई वॉज लाइक, मैं छोटा बच्चा था, आई वॉज लाइक मुझे जाना ही नहीं है, हॉस्टल नहीं जाना है. एंड माई डैड वॉज लाइक, जाना तो पड़ेगा. उस समय मुजफ्फरपुर से रांची बस चलती थी, वो एक अलग ही जमाना था. बस चलती थी, उसमें वीडियो कोच लगा रहता था, एंड वी यूज टू वॉच, उसमें पायरेटेड मूवीज दिखाते थे. एंड मैं रास्ते में अपने पापा को बोलते रहा कि पापा सोच लो एक बार, मुझे नहीं जाना है. He was like, मैं सोच लिया तो मैं तो जाना ही पड़ेगा, तुम बैठे हुए हो. वी रीच रांची बस स्टॉप पे, मैं एक बार आखिरी बार पूछा, पापा पक्का? उन्होंने बोला पक्का. मैं वहां जोरों से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये इंसान मुझे किडनैप करके ले जा रहा है.
1: ओह माय गॉड.
0: मतलब वहां भीड़ गैदर हो गई थी, पापा, मेरे पापा को पीटने वाले थे लोग.
1: ओह माय
0: ही
1: गुडनेस.
0: समहाउ कन्विंस्ड देम कि मैं उनका बेटा हूं.
1: मुझे लगता है कि आई थिंक वो सबसे बड़ा रोल था आपका बचपन
0: आई
1: के
0: कन्विंस सो मेनी पीपल कि आई वॉज बींग किडनैप्ड.
1: मासेस को, आपने
0: हाँ,
1: मतलब एक
0: मासेस
1: रियल
0: को
1: टाइम में कन्विंस
0: रियल
1: कर
0: थे,
1: दिया.
0: हमें बच्चा था.
1: जी
0: सो तभी मुझे पता चला कि हाँ, नौटंकी तो अच्छा कर लेता हूं.
1: नौटंकी कर लेते
0: हाँ
1: हैं. एंड देन उसके बाद, जैसे आपने बताया कि हमारे इंडियन
0: जी.
1: हाउसहोल्ड्स में एक कन्वेंशनल यही होता है कि पढ़ाई लिखाई करें, स्टेबल जॉब करें, फिर कैसे एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई? कैसे कन्विंस किया घर वालों को और खुद को सबसे पहले?
0: कुछ डिसीजन आप अपने लिए खुद लेते हो, कुछ डिसीजन बस आई डोंट नो, डेस्टिनी ले लेती है. मैं कभी नहीं सोचा था मैं एक्टर बनूंगा. मैं तो इंजीनियरिंग किया था, इंजीनियरिंग के भी बाद एमबीए करने का प्लान था, बट समथिंग हैपेंड इन माई लाइफ, आई लॉस्ट माई मदर. एंड देन यू गेट अ पर्सपेक्टिव कि ठीक है, सक्सेसफुल हो के पैसे कमा के भी उसका क्या फायदा, पैसे तो जान नहीं बचा सकता ना. एंड ऑल्सो वेन यू लूज एवरीथिंग, यू नो, वेन यू लूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपको हारने का डर खत्म हो जाता है. तो मेरा हारने का डर खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या था, अगर जीना है तो जो मन कर रहा है तो वो करता है. तो मुझे मन किया उस समय ये भी, तब भी मैं ये नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा. मैं एक्सीडेंटली एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया बैंगलोर में ही, एंड दैट वॉज एन इम्प्रोव थिएटर ग्रुप.
1: मतलब अपने आप को उस दुख से उबारने के लिए कह
0: हाँ
1: सकते हैं.
0: हाँ सॉर्ट ऑफ शुरुआत में इट वॉज एन एस्केप. मैं बस कुछ करना था, देखता हूँ कुछ तो करूँ, एटलीस्ट एक्टिंग करने में मजा आता है. इसलिए ज्वाइन किया था।
1: एंड यू हैड अ स्टेबल जॉब।

0: साइड बाय साइड आप काम भी कर रहे थे।
1: यस
0: ओके और मैं जानना चाहती हूँ, आपने बताया कि बचपन से ही आपको फिल्मों से बहुत प्यार था और आज हम बैठे भी आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं, तो वो दिन भी ऐसे थे जब दूरदर्शन पर पुरानी फिल्म्स आती थी, तो कुछ ऐसा याद है कि स्क्रीन पर आपने किसी हीरो को देखा, बिकॉज हीरो यू नो वहां पर हीरो ही होते हैं, एक्टर्स नहीं, हीरो को देखा और सोचा कि ये मैं भी कर सकता हूँ या मेरा मन कर रहा है कि मैं भी करूँ?
1: मुझे तो बचपन के विजुअल्स याद है, DD1 पे चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी शक्तिमान, मैं पागल था ये सब देखने के। उस समय छोटे शहर में लाइट कट जाती थी, तो अब आई वॉज लाइक ढूंढो किस घर में जनरेटर है, बिकॉज
0: एपिसोड मिस नहीं होना
1: एपिसोड
0: चाहिए,
1: नहीं मिस होना चाहिए, बिकॉज उस समय ये नहीं था ना OTT की, फिर कभी भी देख लो, आई वॉज लाइक ये हो ही नहीं सकता है, कहीं से भी जनरेटर ढूंढ के लाओ। And I was so ziddy. I was like my dad. I would start crying. I would say कि अगर मैं miss कर गया ना ये, तो फिर मैं खाना ही नहीं खाऊंगा. I used to emotionally blackmail my parents for this.
0: तो पढ़ाई में आप कैसे थे?
1: मैं actually पढ़ाई में काफी अच्छा था. I had a very analytical brain, like maths, physics. So उन चीजों में काफी अच्छा था. इन फैक्ट नाउ आई थिंक कि एक्टिंग में भी वो मुझे बहुत हेल्प करता है।
0: सो फिर जब एक्टिंग का सोचा, थिएटर ज्वाइन किया, तो कब मोमेंट आया जब लगा कि नहीं अब इसी रास्ते पर चलना है, जॉब को पीछे छोड़ देते हैं और नई डायरेक्शन पकड़ लेते हैं लाइफ में, कब लगा ऐसा?
1: Like I told you, after that mother's death, I was doing that. But a day happened when जब मैं सोच रहा था मैं करूं या ना करूं. And that day when I was going to office, मेरा एक्सीडेंट हो गया ऑटो से. And for me in my mind it was happening in slow motion. धीरे धीरे ऐसा हुआ. And I thought I lost my life. But I did not. But मुझे जवाब मिला एक. तुम रिस्क एनालिसिस कर रहे थे.
0: Okay.
1: जिंदगी खत्म होने वाली थी.
0: वो टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड यहाँ पर चला,
1: रिस्क एनालिसिस का मतलब ही चेंज हो गया एंड मैं नेक्स्ट डे रिजाइन कर दिया।
0: तो हम आपके इंट्रोडक्शन में एक्टर, राइटर और रिस्क टेकर भी जोड़ सकते हैं।
1: आप मेरी कहानी पूरी फिल्मी है
0: जी,
1: तो उसमें बहुत सारे इंसिडेंट आएंगे, मैं तो घंटों बात कर सकता हूँ, बहुत फिल्मी कारनामे किए हैं मैंने। लाइक मुझे तो कभी कभी लगता है मैं रियल लाइफ में भी डायलॉग बोलता हूँ, लाइक नॉर्मली बात नहीं करता हूँ, लाइक माई पेरेंट्स एंड पीपल क्लोज टू मी दे क्रिटिसाइज।
0: तो ऑफ कैमरा भी हम कह सकते हैं कि नीले एक्टिंग करते रहते हैं?
1: हाँ ऑफ कैमरा ही मैं एक्टिंग करता हूँ,
0: अच्छा
1: ऑन कैमरा मैं जीता हूँ।
0: ओके बट आई होप यहाँ आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं अभी।
1: ऑन कैमरा मैं जीता हूँ, कैमरा ऑन है।
0: ऑलराइट अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपने ज्वाइन किया थिएटर और उससे आगे बढ़ने की सोची, तो डेफिनेटली सबका सपना होता है कि मुंबई जाना है, माया नगरी बोलते हैं, अब यहाँ पर आना और स्ट्रगल करना, अगर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है पर बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपने डिसीजन फाइनल लिया फाइनली, तो क्या फैमिली का सपोर्ट मिल गया, उन्होंने कहा खुशी खुशी जाइए मुंबई में और अपने ड्रीम्स को चेस कीजिए, ऐसा कुछ था? जा निले जीले अपनी जिंदगी, समथिंग लाइक दैट?
1: नहीं नहीं नहीं, अमरीश पुरी जी नहीं थे मेरे डैड। सो थिंग इज, लोगों को तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ, कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, एंड दे वुड हैव स्टिल सपोर्टेड मी अगर मैं अपने आप को हीरो नहीं समझता। मैं डायलॉग मार के आ गया ना, मुझे जरूरत नहीं है आपके पैसों की, मैं खुद से अचीव करके आऊंगा।
0: कदम कदम पर एक्टिंग की है आपने।
1: तो ये जो मैंने बोल दिया ना, ये लाइन मुझे हॉन्ट किया है बहुत बार,
0: तो
1: जब पैसे खत्म हो गए
0: यस अब वापस
1: क्यों बोला था मैंने। मैं मांग लेता ना, क्यों बोल के आ गया मैंने।
0: So, एक रिस्क लिया, मुंबई आ गए, उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या था, कहाँ रहेंगे, खाना पीना, पैसे भी खत्म हो जाएंगे, इतनी जल्दी काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑडिशंस की लंबी लंबी लाइनें, सो कैसे प्लान किया वो सब?
1: शुरू में ये प्लान ही नहीं था, शुरू में प्लान था एक्टिंग कोर्स करूंगा।
0: ओके
1: एंड आई हैड दिस थिंग, मैं जो भी कोर्स करूं या कोई भी पढ़ाई करूं, आई वॉन्ट टू बी द टॉपर।
0: ओके
1: And I had this thing कि मुझे करना ही है, एंड वहाँ भी आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स एंड मेरे माइंड में तो मैं निकलूंगा प्रोड्यूसर्स
0: लाइन लगी होगी प्रोड्यूसर्स की आराम से
1: आई चूज मेरे दिमाग में था कि ठीक है यार

0: कॉमेडी नहीं करना है, थोड़ा सीरियस से स्टार्ट करते हैं, कॉमेडी बाद में करेंगे फॉर अ चेंज.
1: लॉट्स ऑफ स्क्रिप्ट्स आर देयर, यू नो, लाइक वी जस्ट पिक एंड चूज. ओके,
0: मैं दिमाग में कैलकुलेट करता था कि ठीक है देखना, यू नो, स्टीरियोटाइप मत हो जाना शुरू में ही, ठीक है, एक ही टाइप के रोल मत करना. मैं अपने दिमाग में ये सब प्लानिंग कर रहा था.
1: तो अपने दिमाग में आप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे, क्योंकि बचपन से ऑलरेडी काफी एक्टिंग कर ही ली थी आपने. ओके,
0: मैं निकल के भी था, प्रोड्यूसर्स नहीं पहचाने थे, उनकी गलती थी.
1: सो एक्टिंग जब आपने सीखी, सो कभी तो ऐसा हुआ होगा कि कहीं पर एक्ट करते वक्त पहली बार ना सुनने को मिला होगा, ये अच्छा नहीं किया, तो वो जो टॉपर माइंडसेट है उसको कहीं धक्का लगा, अरे मैं तो हमेशा सबसे आगे, अभी क्या हो गया?
0: देखिए, ना सुनना ये बात पे कि ये अच्छा नहीं किया, उससे पहले मुंबई ने बहुत ना सुना दिया.
1: जैसे
0: आप लाइन में खड़े रहते थे वाव ऑडिशन के लिए, एंड द वे एक न्यूकमर को, एक्टर को वहां ट्रीट किया जाता है, फिट फिट फिट नॉट फिट. एक जगह ऐसे बोला, हटो, क्या करके आ रहे हो, बोला ना नॉट फिट, हटो. आई मीन, मैं तो शॉक में था शुरू में, ये क्या, ऐसे क्यों बात कर रहे हो भाई, और अगर मैं बन गया तो?
1: तो ऐसे जब ना सुनने को मिलता है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि आप एक अनजान शहर में हैं, फैमिली भी साथ में नहीं है कि घर चले जाएं तो थोड़ा वो पैम्पर कर दें, ऐसे वक्त में कैसे खुद को संभालते, स्पेशली एज एन आउटसाइडर, आप एक छोटे शहर से आए हैं, बहुत सारे सपने हैं आपके, बट द वर्ल्ड इज नॉट वेरी काइंड टू यू.
0: मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, और मैं मानता भी हूं कि एक एक्टर को अच्छा एक्टर बने रहने के लिए ना वल्नरेबल होना बहुत जरूरी है. तो वो मैं छोड़ नहीं सकता था, और मैं इमोशनली वल्नरेबल हूं. मैं तो इनफैक्ट बहुत बार रोता हूं.
1: तो इस माया नगरी में जहां पर कई प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इमोशनल होना एक वीकनेस नहीं माना जाता?
0: माना जाता, लोग मानते हैं कि इमोशनल होना वीकनेस है. इनफैक्ट मैं जहां से आया हूं, मैं छोटे जगह से आया हूं, वहां तो रोना बाई अ मर्द इज नॉट कंसिडर्ड गुड. मर्द होके रो रहे हो भाई,
1: आप रोते हैं?
0: मैं तो सिनेमा देख के रो देता हूँ. मुझे लगता है अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोना. आई मीन, आई थिंक दैट इज ब्रेव. एंड वाई टू टर्म इट कि मर्द होके, उसमें तो बहुत सारे कंसेप्चुअली गड़बड़ है कि ओके, मर्द आर सपोज टू बी ब्रेव. नो, आई डोंट थिंक सो. आई मीन, इवन अगर आप बायोलॉजिकली, यू नो, हिस्टोरिकली भी देखिएगा, आई फाइंड वुमेन आर ब्रेवर देन मैन. दे हैव ऑलवेज बीन. देयर इज अ रीजन गॉड, प्रकृति, साइंस, किसी ने, आई मीन, दे हैव गिवन वुमेन, यू नो, द राइट टू give birth.
1: So women express themselves very beautifully, you know.
0: Yeah.
1: अपने दोस्तों से बातें कर ली, रो लिया, खुद को कहीं ना कहीं वे एक्सप्रेस करती हैं. आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो जब डाउन फील करते हो, लो फील करते हो? What's your coping mechanism?
0: And you know, I just go quiet. I cry sometimes. And I start expressing it. Sometimes
1: लिखते भी
0: हाँ, कभी कभी लिखने लगता हूँ. In fact, एक बार बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट हुआ था. मैं अपने घर में बैठा हुआ था, बाहर की तरफ देख रहा था. आई हैड टीयर्स इन माई आईज एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्रेस, एंड मैंने कुछ लिखा था. इफ यू परमिट, मैं सुनाना चाहूंगा. एंड उस समय मेरा बहुत डाउन चल रहा था, यू नो, आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज कि कुछ तो हो ही नहीं रहा है, हाउ डू आई फाइट.
1: मुंबई में थे आप?
0: मुंबई में, हाँ. तब मैंने लिखा था, आंसुओं को बहने दो, सैलाब तो अब यही लाएंगे, अधूरे से जो ख्वाब रह गए थे उसे पूरा यही कराएंगे, दर्द जो लिया है उधार में अब उसका कर्ज उतारना है, मुस्कुराहटों के पीछे जो छुपा रखे हो अब उस समुंदर में डूब जाना है, तेज लहरें आएंगी, मझदार में तुम फंस भी जाओगे, लेकिन उसका सामना ही ना किया तो कभी तैरना ना सीख पाओगे, दुनिया की बातों पे जो एतबार करने लगे हो शायद खुद से ही थोड़ा कम प्यार करने लगे हो, कभी आंखें मूंद करके देख लो, शायद वो अनदेखा सच देख पाओगे, अंधेरे में जो देखना सीख लिया शायद मन के उस शांत पुकार को भी सुन पाओगे.

0: आंसुओं को बहने दो, सैलाब तो अब यही लाएंगे।
1: That's very, very beautiful. बहुत डीप है, मुझे लगता है कि शायद मैं पोइट वर्ड मिस कर गई आपके इंट्रोडक्शन में. आप बहुत अच्छा लिखते हैं और आई थिंक मैं अब मेकआउट कर सकती हूँ कि कैसे आप उन लो मोमेंट्स से खुद को उबारते हैं, बाहर लेकर आते हैं. आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं आपने बताया,
0: जी,
1: लेकिन ये जो आपके इमोशंस हैं, आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, क्या आपको एक्टिंग में हेल्प करते हैं? आपने कहा आपने एक्टिंग सीखी है,
0: जी
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या एक्टिंग सीखना जरूरी है? सीखकर आप अच्छे एक्टर बन जाते हैं, या ऐसे ही अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके, जिंदगी के अनुभवों को अपने आगे रख के आप अच्छे एक्टर बनते हैं? क्या है ये अच्छा एक्टर बनने का फॉर्मूला?
0: देखिए, अच्छा एक्टर बनना या किसी भी फील्ड में एक्टिंग, किसी भी फील्ड में अच्छा करना, बेसिकली आप बात करना चाह रहे हो किसी भी फील्ड में नॉलेजेबल इनफ होना,
1: जी,
0: तो उसके लिए आपको कुछ सीखना तो पड़ेगा। बट उस सीख को कैसे आप परसीव करते हो, जैसे अगर एक्टिंग में देखे, बहुत सारे थ्योरीज है, माइजनर, मेथड एक्टिंग, स्टीफन बुक, मैंने सब पढ़ा, सब पढ़ा। बट अगर मैं उसको एब्सोल्यूट ले लूं कि दैट इज नॉलेज, तो मैं वहीं पे फंस गया। दैट इज अ परसेप्शन ऑफ दैट पर्सन,
1: राइट?
0: उनका एक्टिंग का परसेप्शन है। मैं पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आना चाहिए कि वो उनका सोच किधर जा रहा है,
1: राइट?
0: अगर वो इंफॉर्मेशन लेके मैं अपने एक्सपीरियंस अपने लाइफ के साथ कंबाइन करूंगा ना, तब शायद नॉलेज की तरफ बढ़ पाऊंगा। पर अगर उसको मैं फिक्स कर लिया, डिफाइन कर लिया कि यही सच है, तो मैं वहीं पे बंध गया। तो एक्टर तो छोड़ो, आप एक्टिंग तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे।
1: तो कभी ऐसा हुआ कि एक्टिंग करते करते कुछ ऐसा मोमेंट आया जहां पर आपको लगा कि अभी इससे बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मैं ज्यादा इमोशनल हो गया, कुछ ज्यादा ही आप उसमें इन्वॉल्व हो गए कि कहीं ना कहीं आप उसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करने लगे?
0: अभी हमारी जो सीरीज है हेलो हम बोल रहे हैं
1: जी, इस पर हम बहुत विस्तार से भी चर्चा करेंगे. जी बताइए.
0: पर उसमें सुष्मिता मुखर्जी जी, शी प्लेड माई मदर, एंड एक बहुत ही इमोशनल सीन है बिटवीन पप्पू एंड
1: पप्पू योर कैरेक्टर,
0: वो उनका एक बहुत ही इमोशनल सीन है सुष्मिता जी के साथ
1: जी,
0: एंड इट एंड्स विद ना बहुत ही प्यारा सा हग। माँ उसको ऐसे करती है एंड पप्पू उसके गोद में है, एंड आई वाज एक्टिंग एंड सडनली व्हेन दैट हग हैपेंड ना, आई रिमेम्बर्ड अ फीलिंग जो शायद बहुत सालों से नहीं किया था।
1: आप मिस कर रहे थे?
0: मिस क्या, वो महसूस जो है ना, वो एहसास समो में भूल रहा था, एंड अचानक से वो एहसास जो फील हुआ ना, आई रिमेम्बर, ओ ओके, आई यूज टू हैव दैट, सो दैट वॉज समथिंग, यू नो, अच्छा भी लगा, हैवी भी लगा, एंड देन कट।
1: तो कट के बाद उस जोन से बाहर आने में टाइम कितना लगा?
0: सी दिस पर्टिकुलर इमोशन आई हैव ट्रेन्ड माई माइंड, नाउ आई नो इट हैज, मतलब शुरुआत में ऐसे जब भी हुआ तो मैंने अपने अपने तरीके बनाए निकालने के, बट बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारे ऐसे सीन्स है जो मुझे इफेक्ट किए हुए।
1: Okay.
0: I mean, वयम मूवी अगर
1: वयम पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले पहला प्रोफेशनल जो असाइनमेंट था आपका एक्टिंग का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे मिला, कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई, फाइनली आपने एक्टिंग सीख ली और कुछ अपने इमोशंस से उसको निखार भी लिया, तो पहला असाइनमेंट क्या था?
0: Okay, मैं जब बैरी जॉन से निकला तो मुझे तुरंत एक असाइनमेंट भी मिल गया था।
1: ओके
0: एंड मुझे लगा हो गया, यही तो मैं बोल रहा था तुम लोग को,
1: चाहिए था
0: चाहिए था, दूर की बात है, मैंने तो बोल दिया था, तुम ही नहीं सुन रहे थे, मैं क्या, देखो
1: ओके
0: अब आगे देखना। वो सुपर फ्लॉप हो गई, शायद किसी ने नहीं देखा।
1: ओके, तो किसी ने नहीं देखा,
0: तो मैं उसको एक्टिंग डेब्यू ही नहीं माना।
1: अच्छा ठीक है, तो आप बताना चाहेंगे वो क्या था कि ढक्के रखना चाहेंगे उसके राज की तरह?
0: जब किसी ने देखा ही नहीं तो मैं तो
1: शायद आप देख लें,
0: डेब्यू अभी कर रहा हूँ।
1: ओके, सो फिर यानी बहुत सारे असाइनमेंट्स आते हैं, यू नो, और एक्टिंग जॉब्स आते हैं जो एक एक्टर करता है, थोड़ा स्ट्रगल भी रहता है। व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन यू फाइनली रियलाइज दैट नाउ आई हैव अराइव्ड? वाज इट वयम?
0: आई स्टिल डोंट थिंक आई हैव अराइव्ड,
1: ओके,
0: बट एटलीस्ट वयम गेव मी समथिंग जो इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जब जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि 14 साल में आपका नेटवर्क बन जाता है, यू स्टार्ट यू नो हैंगिंग आउट विद पीपल, फिर वो देखे, फिर वो दूसरों को देखे दिखाए, एक इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क बनता है. तो उनके अंदर ये बिलीफ हुआ कि अच्छा ये ऐसे ही नहीं है, ये तो अच्छा एक्टर है. राइट. उससे पहले इट वॉज लाइक कि हाँ अच्छा है, हर जगह टॉप किया है, ये किया है. बट वयम ने उन्हें कुछ और एक प्रूफ दे दिया.
1: वयम आपकी जो सीरीज है उसमें आपने 10 डिफरेंट रोल्स प्ले किए हैं. एंड जब मैंने वो देखी तो मुझे मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल संजीव कुमार जी की मूवी नया दिन नई रात, कहीं ना कहीं मैं उसे रिलेट कर पा रही थी. उसमें उनके 9 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, वहां पर भी नवरस की बात होती है. बट वयम समवेयर इज अ बिट डार्क. सो कैसा था वो एक्सपीरियंस? और क्योंकि अभी आप इतने ज्यादा अनुभवी नहीं हुए हैं इस फील्ड में, और वयम जैसा आपको एक उस मूवी में एक किरदार निभाने को आपको मिला, इतने डिफरेंट शेड्स हैं, ग्रे शेड्स भी हैं. कभी ऐसा हुआ कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या अभी आई नीड मोर ट्रेनिंग, आई नीड मोर एक्सपर्टीज, कुछ ऐसा मोमेंट आया?
0: नहीं, ये कभी नहीं आया कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा.
1: ओके.
0: बिकॉज दैट आई न्यू व्हेन वयम वाज रिटन, आई न्यू, आई टोल्ड अभियांक जो डायरेक्टर है उनको, आई टोल्ड हिम कि मैं अवार्ड लेके आने वाला हूँ इसमें. आई टोल्ड हिम दैट टाइम ओनली, बनाने से पहले, कि मैं इसमें अवार्ड लेके आऊंगा. वो भी बोले कि हाँ पता है, वो तो आप लेके आओगे.
1: राइट.
0: एंड आई वॉन्ट 3 बेस्ट एक्टर अवार्ड. मैं 3 चीज हूँ, एन ऑडियंस, अ राइटर एंड एन एक्टर. एज एन ऑडियंस, आई लव रोमांटिक कॉमेडी.
1: ओके.
0: आई लाइक रोमांटिक कॉमेडी, इवन गोविंदा वाली कॉमेडीज. आई वॉच दोज कंटेंट्स.
1: ओके.
0: एज अ स्क्रिप्ट राइटर आई हैव अ विजन, मैं कुछ बताना चाहता हूँ. मैंने अपने स्क्रिप्ट लिखे हैं और वो है चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ दुनिया में. एज एन एक्टर मैं जज नहीं कर सकता हूँ कैरेक्टर को.
1: हम सबके पास कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं अपनी लाइफ में, जब बहुत इट गेट्स टू मच, तो फिर कोई वेकेशन पर चला जाता है, कोई रिलैक्स करता है, सो जाता है, कोई म्यूजिक सुनता है, तो कुछ ऐसा कुछ करते हैं जो थेरेपी की तरह होता है.
0: या लेटली आई मीन आई गो ट्रैवलिंग. इनफैक्ट तमाशा मूवी आपने देखा है? उसमें हाय आई एम वेद.
1: यस,
0: आई डू दैट.
1: ओह वाओ, दैट्स नाइस.
0: दैट साउंड्स वेरी प्रिविलेज्ड. आई नो, बट ठीक है, क्योंकि अब मैंने वो डायलॉग खत्म कर दिया ना कि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा.
1: जी.
0: वो डायलॉग दैट डजंट स्टैंड एनीमोर.
1: तभी वापस
0: अब मैं ले सकता हूँ आपसे.
1: यानी वापस जाने का स्कोप है, ले सकते हैं जाके.
0: हाँ हाँ, अब ले सकते,
1: अब ले सकते हैं.
0: तो अब क्या है कि जरा मैं घूम के आता हूँ, पर्सपेक्टिव लेके आता हूँ, कार्ड दे देना बस.
1: तो घूमते घूमते आप निकल गए ओटीटी पीबी वेव्स की तरफ और किया हेलो हम बोल रहे हैं. तो हेलो हम बोल रहे हैं कि जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं.
0: तो पप्पू प्रसाद पांडे एकदम ही केयरफुली लड़का है, जैसे गाँव के लड़के होते हैं. तो एक ऐसा इंसान, एक दिन उसके दोस्तों ने उन्हें बोला कि भाई तेरे पास लड़की क्यों नहीं है. एंड उस चैलेंज में एक दोस्त ने मास्टर प्लान निकाला कि मैं 100 लड़कियों के नंबर ला रहा हूँ.
1: अच्छा.
0: एक ना एक तो कोई लड़की तुमको प्यार हो ही जाएगा, एक ना एक भाभी होगी.
1: अच्छा.
0: एंड उसी बकवास में ना ही एक्सीडेंटली कॉल्स अ गर्ल हु इज द हीरोइन ऑफ द शो, पाखीधारी प्रतिभा तिवारी. And then everything takes a political angle.
1: Political angle. Political angle. Comedy.
0: It. अगर आप ट्रेलर देखे ना, उसमें हमने डिफाइन ही नहीं किया ये है क्या. क्या ये कॉमेडी है, क्या ये फैमिली ड्रामा है, क्या ये पॉलिटिकल एंगल है?
1: अब तो मुझे सस्पेंस भी नजर आ रहा है इसमें.
0: क्या ये सस्पेंस है? ये हमारी जो जिंदगी है, आपकी जिंदगी. अगर मैं आपकी जिंदगी को जॉनर दे दूंगा, ठीक है, आपकी जिंदगी रोमांटिक है, आपकी जिंदगी पॉलिटिकल, कैसा लगेगा आपको?
1: जी.
0: वैसे ही ये पप्पू प्रसाद पांडे, पाखीधारी, पवन, सिंदूरी पान सिन्हा जो यशपाल जी प्ले कर रहे हैं, मेरी माँ सुष्मिता मुखर्जी, ये इन सब की कहानी है.
1: जी.
0: कोई भी कहानी को जॉनर क्यों देते हो? कहानियां तो बस कहानियां होती है, उसमें हर जॉनर आते हैं. हमारे जिंदगी में दिन भर में 10 जॉनर आते हैं. तो वैसे ही हेलो हम बोल रहे जर्नलिस्ट है, बस कहानी है.
1: और ये कहानी बहुत रिलेटेबल भी है, गांव देहात की कहानी. यहाँ पर इमोशंस है, आपस में बॉन्डिंग नजर आ रही है फ्रेंड्स की. आपने एक मदर और सन के रिलेशनशिप की बात करी, और फिर वो जमाना जब कॉल कर आप यू नो मिस कॉल में हम सोचते मिस कॉल देंगे, ब्लैंक कॉल करेंगे और आवाज सुनेंगे. तो ये जो है, हम जब आज बात करते हैं इंक्लूजन की, हर कोई वो कंटेंट देखना चाहता है जो रिलेटेबल हो. एक यूथ को उसके जैसा कंटेंट चाहिए, एंटरटेनिंग या एडवेंचरस. और जो हमारे एल्डरली लोग हैं उनको उनके जैसा कंटेंट चाहिए. गांव देहात के लोगों

0: भी अपनी भाषा, अपने जैसा कंटेंट चाहिए। सो इसमें किस तरीके से वो एक एक्सपीरियंस रहा आपका, क्योंकि आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, और कैसा वो एक्सपीरियंस रहा, उस चीज को कैसे जिया आपने, कितने अपने पर्सनल एलिमेंट्स आपने पप्पू प्रसाद पांडे जी में डाले?
1: काश काश पप्पू प्रसाद पांडे जो काम करते हैं वो मैं कर पाता
0: जी।
1: वो मैं बस माइंड में करता था बचपन में, ओके साइकिल पे आगे आगे लड़की को बैठा

0: सही से पूछो, ये नहीं बोला था हीरोइंस के साथ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर मिल गए तो वो एक्सपीरियंस इज नॉट द सेम, बट इट वॉज फन, इट वॉज फन. आई वॉज ट्राइंग टू से, हाँ, पप्पू प्रसाद पांडे जो है, मैं कॉलेज लाइफ में ना जो थोड़ा केयरफ्री था एंड थोड़ा बिंदास था,
1: अरे गांव की जो स्लो लाइफ होती है, उस स्लो लाइफ में रहने वाला इंसान, कोई जल्दी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, अपनी मस्ती में जी रहे हैं, वैसा है कुछ?
0: हाँ वैसे ही है, वैसे ही उन लोग, आई मीन उसमें डायलॉग है, चल भाई काम करने चलते हैं. हाँ चल, क्या काम?
1: अच्छा
0: चाय पीने.
1: अच्छा या वो देख लेंगे क्या करना है
0: वो चलो तो सही, देखो तो सही, चाय पियो तो सही,
1: राइट, काम भी निकल जाएगा,
0: हो जाएगा,
1: हो जाएगा
0: देखेंगे
1: चाय।
0: काम क्या करना.
1: अभी आपने कहा कि हीरोइन की जगह असिस्टेंट डायरेक्टर मिल गए साइकिल पर
0: हाँ
1: बैठने के लिए। अभी जब हीरोइन बैठे होंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा अलग हो गया होगा सीन। मैं जानना चाहती हूँ एक एक्टर के लिए उसके जो को एक्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना मैटर करता है परफॉर्मेंस को अच्छा करने में, आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने में।
0: देखिए, ये जब मैंने एक्टिंग शुरुआत किया था ना, इवन बैरी जॉन में, मैं बहुत अच्छे मोनोलॉग्स देता था. ओके, एट द रिस्क ऑफ नॉट साउंडिंग वेरी हम्बल, आई वाज वंस टर्म किंग ऑफ मोनोलॉग्स.
1: ओके ग्रेट।
0: बट गिविंग अ मोनोलॉग इज समथिंग एल्स, ओनिंग अ स्टेज, यू परफॉर्मिंग, वो था. लेकिन जब आपको सीन करना होता है ना, तो एक दूसरा इंसान भी है.
1: जी
0: अब यहां आप अपना मोनोलॉग नहीं दे सकते हो, आपको समझना होगा. तो मैं शुरू में जब करता था, और अगर दूसरा एक्टर वीक है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं, हमारा सीन खराब हो गया, और
1: ओके
0: मैं खुद में सोचता था यार काश ये अच्छा एक्टर होता या होती, अच्छा सीन हो जाता.
1: तो
0: लेकिन आज
1: रीटेक रीटेक ले लें।
0: रीटेक, अगर वो, उन्हें उतना इमोशन ही देने नहीं आता है, या वो उतने अच्छे एक्टर ही नहीं है, तो मुश्किल हो
1: तो
0: जाएगा.
1: कम्युनिकेशन करना, बताना उनको इजी होता है?
0: और मैं नहीं बताता था ना, मैं क्यों बताऊंगा, डायरेक्टर का काम है. बट ये एक्टर्स का, एक एक्टर दूसरे एक्टर को ये नहीं बोल सकता है भाई, थोड़ा एक्टर्स का ईगो होता है. तारीफ कर सकता है, बुराई नहीं.
1: अच्छा, क्रिटिसाइज नहीं कर
0: हाँ,
1: सकते।
0: क्रिटिसाइज नहीं, दे टेक इट पर्सनली. अब एक दूसरी बात समझ में आई है कि एक्टर वीक कोई नहीं होता है, ठीक है, आपका परसेप्शन है. हो सकता है वो एक्टर कम इमोशन दे रहा हो सकता है वो फंबल कर रहा हो. व्हाट इफ मेरा जो पर्सन सुन रहा है उसको, वो उसको वैसे ही रिसीव करे जैसे वो पर्सन बोल रहा है या बोल रही है. अगर आप अपना रिसेप्शन चेंज कर दोगे ना, आपका एक्टिंग शायद उतना अच्छा ना लगे जितना आप करने वाले थे,
1: जी
0: पर उसका एक्टिंग अच्छा लगने लगेगा और उससे सीन बेहतर हो जाएगा.
1: राइट
0: और अगर सीन बेहतर हुआ, प्रोडक्ट बेहतर हुआ, फिल्म बेटर हुआ, तो फिर आपका भी फायदा.
1: बिल्कुल
0: तो अब ये बात समझ में आई है कि हर जगह आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हो.
1: या इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द अदर पर्सन एज वेल।
0: राइट राइट समटाइम्स टेकिंग अ बैक सीट
1: या
0: फॉर द फिल्म,
1: इज द
0: बिकॉज आई कम
1: वाइजेस्ट।
0: फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस कि मैं अभी भी ओल्ड स्कूल हूं, कर्म ही धर्म है, मतलब फिल्म मेरे लिए भगवान है, दैट्स इट,
1: जी
0: आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ इट. सो फिल्म का फायदा होगा, मेरे भगवान का फायदा होगा, तो उससे ज्यादा अच्छा क्या है.
1: तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता, लाइफ कम्स ए फुल सर्कल, बचपन में दूरदर्शन देखना और आज पीबी वेव्स के साथ जुड़ना, हेलो हम बोल रहे हैं के जरिए। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस लाइक जस्ट यू नो, एक स्क्रीन पर आप सोचते थे कि आप भी जाएं एक्ट करें, शक्तिमान आपने बताया,
0: शक्तिमान,
1: चंद्रकांता आपने बताया,
0: चंद्रकांता,
1: और आज पीबी वेव्स के साथ आप जुड़े, कैसा एक्सपीरियंस रहा?
0: एक्सपीरियंस मेरे लिए तो आई एम रियली थैंकफुल टू पीबी वेव्स. सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूरदर्शन प्रसार भारती डिजिटलाइज हो गया,
1: जी
0: सो पीबी वेव्स इज लाइक द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऐप ऑफ इंडिया, लाइक, सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग. और मुझे पीबी वेव्स का ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि मेरे ना बहुत सारे रिलेटिव इंडिया के बाहर रहते हैं,
1: जी
0: तो बहुत सारे जो प्राइवेट ऐप्स है वो वहां पे नहीं खुलते हैं, कहीं खुलते हैं कहीं नहीं खुलते हैं.
1: जी
0: बट इफ यू नो पीबी वेव्स इज प्रेजेंट इन लाइक आई थिंक
1: या
0: 137 कंट्रीज और
1: वेल नाउ
0: 138
1: इट्स
0: कंट्रीज.
1: डिजिटल सो यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम एनी वेयर।
0: नो बट देयर आर मेनी एप्स प्राइवेट.

0: एप्स जो इंडिया के बाहर एक्सेसिबल नहीं है.
1: हाँ एक्जैक्टली.
0: सो ऑल माय बहुत सारे रिलेटिव एंड ऑल वो लोग कंप्लेन करते रहते हैं, बट दिस एवरीवन इज एबल टू वॉच.
1: तो व्यूज बढ़ रहे हैं फिर.
0: व्यूज बढ़ रहे हैं. एंड जैसा कि आपने बताया, मैं DD1 पे वेट करता था कि आज कोई नई मूवी लगाने वाला है. उसमें दिखाता है ना एड कि ये मूवी आने वाला है किसी दिन. कोई नई मूवी, नई मूवी मतलब बस एक ही दो साल पुरानी मूवी, दैट वाज न्यू मूवी.
1: सो मुझे लगता है कि आप काफी ब्लेस्ड हैं, क्योंकि रेडियो पर गाने सुने तो आज आकाशवाणी में बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, दूरदर्शन पर मूवीज देखी और पीबी वेव्स पर खुद एक्ट भी किया. मैं एक चीज यहाँ पे ये भी जानना चाहती हूँ कि इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और हर तरह की सीरीज होती हैं, इस सीरीज में ऐसा क्या खास है, कोई इसे क्यों देखे, क्या यहाँ पर सबके लिए सब कुछ है, ये पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट करके इसको बनाया गया है, मैं इसको क्यों देखूं, और क्योंकि वो भी तब जब भैया जी कौन है ये मुझे अब तक पता नहीं चल रहा है.
0: देखिए ये मुझे तो आप इसलिए, मुझे लगता है आप इसलिए देखिए ना कि हर जगह बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ दिखा रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे. आइए ना चाय पी के गप हो रहा है.
1: इसकी बहुत जरूरत है, एक लग्जरी एक्चुअली है.
0: कुछ कोई बहुत चीजों का तो मतलब नहीं. अब इस सीन का क्या मतलब है भाई, ये 100 नंबर लाए हैं, कॉल करो एक ना एक तो भाभी निकल जाएगी. और वो कॉल किए जा रहे हैं, कोई किसी को लग जाता है कॉल. वो एंड पप्पू प्रसाद पांडे, हेलो हाँ कौन बोल रही है उधर से, जल्दी बताइए, जल्दी बात कीजिए, हमको स्कूल निकलना है. ईच वन टर्न्स आउट टू बी अ स्कूल गोइंग गर्ल एंड दे आर लाइक शॉक एंड देयर इज अ डिस्कशन हैपनिंग कि अच्छा ये तो गुनाह हो गया.
1: तो कुछ फनी इंसिडेंट्स हुए और यहाँ पे शूट करते वक्त
0: फनी इंसिडेंट्स बहुत हुए. वन थिंग आई रिमेम्बर वाज दैट साइकिल शॉट आई वाज सेलिंग. हाँ तो वहां पे ना जब AD को एन ऑल प्रैक्टिस कराता था, एवरीवन यूज्ड टू लाफ. गांव था.
1: oh, yes.
0: कर क्या रहे कर क्या रहे बना क्या रहे हीरोइन की जगह इसको. ही वाज अ वेरी स्वीट AD बट स्टिल. एंड देयर वाज अ थिंग, सब मुझे बोलते थे हो हीरो हीरोइन को गिरा मत देना. साइकोलॉजिकल प्रेशर था
1: तो आप
0: गिरा मत देना.
1: तो आप कह सकते हैं आप हीरो बन गए हैं जो आप हीरो बनना चाहते थे.
0: हाँ सो हेलो हम बोल रहे हैं. आई फेल्ट लाइक अ बिट हीरो. YM, I was just an actor, a good actor, playing different characters, अलग अलग 10 character.
1: और upcoming आपके projects के बारे में थोड़ा सा बताइए. What's next?
0: That's not पप्पू प्रसाद पांडे का कोई upcoming project.
1: पप्पू
0: प्रसाद पांडे का भी upcoming project है.
1: Okay. Yes.
0: लड़की को भगाओ लड़की और चाय पियो, वो पप्पू के upcoming projects.
1: Okay.
0: जो ज्यादा critical है. और मेरे भी एक दो है छोटे मोटे, नॉट एज इम्पोर्टेंट एज पप्पूज बट है छोटे मोटे. सो आई एम फाइनली डेब्यूटिंग इन अ फिल्म एज अ लीड
1: एंड
0: फाइनल शेड्यूल अभी आई थिंक अक्टूबर में होना चाहिए.
1: जी.
0: आई हैवन्ट गॉट द डेट्स बट दैट वुड बी माय डेब्यू.
1: Wow, that's very nice. अच्छा एक और बात की जाती है इंडस्ट्री में, आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड.
0: राइट.
1: कहीं ब्रेक ले लिया, थोड़े दिन नजर नहीं आए तो इंडस्ट्री भूल जाती है आपको. सो फेम चाहिए या सस्टेनेबिलिटी चाहिए, एक एक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बस कुछ भी करते रहो, बने रहो, साइट में रहो, नजरों में रहो, या थोड़ा सस्टेनेबल हमें रहना है, लॉन्ग टर्म का सोचना है, तो पिक एंड चूज करने की लिबर्टी होती है.
0: नहीं नहीं सस्टेनेबिलिटी अगर आपको करना है तो थोड़ा फेम तो चाहिए. फेम के बिना आप सस्टेन कैसे करोगे? लाइक यू नीड, क्योंकि फेम के साथ मॉनेटरी सक्सेस भी आएगा. तभी आई मीन सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको आपको पता है PR मार्केटिंग ये सब पे खर्च करना होता है. बिकॉज दैट्स हाउ एन एक्टर स्टेज इन लाइमलाइट. तो नहीं तो वो नहीं तो फिर पापा को कॉल करो.
1: पापा को कॉल करो से याद आया कि अब पापा क्या सोचते हैं, पापा का विजन अब कैसा है आपको लेके, आपके फ्यूचर को लेकर? उस टाइम तो आई एम श्योर उनके लिए भी बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा होगा. किसी भी पेरेंट के लिए होता है कि जॉब छोड़ दी, स्टेबल जॉब छोड़ दी, कहाँ जा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमाने जिसका भरोसा नहीं है. सो अभी वापस जा सकते हैं? अभी लाइक हाउ डू दे सेलिब्रेट योर सक्सेस?
0: सी अगेन इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ओवर देयर, दे आर नेवर गोइंग टू टेल मी माय डैड इज नॉट गोइंग टू. बहुत अच्छा एक्टर ये है, बट आई गॉट टू हियर इट फ्रॉम समवेयर. ही वॉज टेलिंग समवन, ओ सुनो हीरो के पापा हैं.
1: अरे वाह. सो आपको कैसा लगता है अब जब लोग आपको, आपके फादर को कह रहे हैं हीरो के पापा हैं, आपको हीरो कह रहे हैं, आपकी इस जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आर यू हैप्पी?

0: नाउ आपको लगता है कि हाँ वो मोमेंट आ गया जब ये सेलिब्रेशन लॉन्ग ड्यू था, बनता था, यू आर कंटेंट नाउ?
1: मैंने सोचा था मैं उतना खुश रहूंगा, पर मैं अभी हैप्पी नहीं हूं। मैं आगे का सोच रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है अभी हैप्पी रहने का। सो समटाइम्स व्हाट यू वेट फॉर थ्रू आउट योर लाइफ, जब आ जाता है ना, तो शायद आपके पास वो वक्त नहीं होता है सेलिब्रेट करने का।
0: और कभी ऐसा नहीं लगता कि चलो आज तो सब पहचान रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस टाइम पर क्यों नहीं विश्वास किया जब मैं बहुत डिटर्मिंड था कि मैं कर सकता हूं, उस वक्त क्यों नहीं सपोर्ट किया? कहीं ना कहीं वो मन में रहता है, कसक सी रहती है मन में.
1: यू नो दैट्स द वर्स्ट पार्ट, दैट्स द वर्स्ट पार्ट। आई होप समडे इट हैपेंस दैट पीपल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द जर्नी। मुझे अभी मैसेज आ रहे हैं, कॉन्ग्रेट्स एंड ऑल। काश वो उस समय आए होते जब मैं डिप्रेशन में था, मैं फाइट किया, तब काश आए होते कॉन्ग्रेट्स यू वॉन योर फाइट अगेंस्ट दैट डिप्रेशन, कॉन्ग्रेट्स यू टुक अ स्टेप फॉरवर्ड इन योर जर्नी। काश ये मैसेजेस आए होते, ये मैसेजेस भी अच्छे हैं, आई एम फीलिंग गुड, पर काश उस समय भी आए होते।
0: तो अप्रिसिएशन के मैसेजेस आते हैं तो अच्छा लगता है, और जब कोई क्रिटिसाइज करता है तब कैसा लगता है?
1: वो गलत है, गलत है, उसको पता नहीं
0: अच्छा, उसको
1: है।
0: पता नहीं है. यहाँ सब ठीक है, उसको पता नहीं है.
1: क्यों यार, जाओ थोड़ा स्टडी करके
0: ग्रेट, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है ऐसे, यू नो, अपने आप को खुश रखने के लिए. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. हाउ डू यू सी योर सेल्फ इवॉल्विंग एज एन एक्टर, लेट्स से ज्यादा लंबा टाइम ही लेते, 3 ईयर्स डाउन द लाइन,
1: क्या 3 years डाउन द लाइन तक तो आई डोंट
0: फोर्टीन
1: नो।
0: ईयर्स की ऑलरेडी जर्नी हो चुकी है.
1: हाँ 3 years डाउन द लाइन,
0: चलिए 5 ईयर्स कर देते हैं.
1: हाँ 5 years। सी आई टेल यू वन थिंग, एज एन एक्टर मैं रोज ग्रो करने वाला हूँ, क्योंकि मैं रोज नया एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ। बट इफ यू मीन द सक्सेस एस्पेक्ट ऑफ इट, आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन इट। अगर मैं वर्ड्स में पुट करूँ, वर्ड्स लिमिटेड है, इट्स गोइंग टू बी डिफाइन। फॉर मी इट्स अ फीलिंग, तो मुझे पता है, मुझे फील होता है, लेकिन उसको मैं वर्ड्स में पुट करके छोटा नहीं करना चाहता। सो फॉर मी इट्स दैट, दैट इज द सक्सेस विच इज अनडिफाइंड, विच इज मेड ऑफ यू नो नॉट जस्ट अचीवमेंट्स, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फेलियर्स, जर्नी, एंड फेलियर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वही यूनिक है, वो डिफरेंट है आपके फेलियर से। सक्सेस का जनरली लोग एक मापदंड दिए हुए हैं कि
0: जी,
1: ये है सक्सेस, फेलियर्स का कोई मापदंड नहीं है, सबके अलग अलग फेलियर है।
0: तो चलिए आज आप एक एक्टर हैं, सक्सेसफुल हैं, और आगे सक्सेस मिलेगी, हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं. अगर अगर एक्टर नहीं बन पाते इतनी यू नो
1: हाँ
0: स्ट्रगल के बाद भी, तो क्या वापस इंजीनियरिंग की जॉब पकड़ लेते?
1: क्रिकेटर बन जाता,
0: क्रिकेटर बन जाते
1: क्रिकेटर
0: हैं.
1: बन जाता। हाँ थोड़ा लेट हो गया हूँ, मे बी फास्ट बॉलिंग नहीं कर पाता, स्पिन कराना पड़ता, तो वो बन जाता।
0: चलिए, यानी आपने एक बैकअप प्लान रखा हुआ था.
1: हाँ, क्रिकेटर तो मैं मेरा पहला ऑप्शन था, फिर मुझे पता चला मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ, तो
0: तो एक्टिंग कर
1: फिर
0: लेते
1: एक्टिंग कर लेते हैं। लाइक एनी इंडियन किड, क्रिकेट एंड फिल्म।
0: सो हमारी कंट्री में क्रिकेट और फिल्म्स बहुत पॉपुलर है, सबकी पहली पसंद यही रहती है. लेकिन सबकी पहली पसंद उनकी पहली जॉब बन जाए जरूरी नहीं है. बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं, मुंबई आते हैं, या मैं कहूंगी कि दिल्ली में भी आते हैं, यू नो, कि हम एक्टिंग करेंगे, हम थिएटर ज्वाइन करेंगे, और कुछ सक्सेसफुल हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते. तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज दोगे? आपकी जर्नी से वो क्या कुछ सीख सकते हैं? क्या टेक अवेज रहने चाहिए जो आपने खुद महसूस किया?
1: देखिए मेरे जर्नी से एक्चुअली मुझे पता कोई नहीं सीखने वाला है, कोई दूसरे के जर्नी से सीखता नहीं है। मैं बहुत चीज़ें बोल दूंगा, बट कोई कोई दूसरे के जर्नी से एक्चुअली सीखता नहीं है, गलतियां करना ज़रूरी है। मैं बस यही बताना चाहूँगा कि प्रॉपर एनालिसिस कर लो, अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो, और आप वो छोड़ के यहाँ आने का कर रहे हो, आप कॉलम बनाओ, आप पेपर पेन लो, लिखो, शॉर्ट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, आपके अंदर क्या वीकनेस है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, फिर दो कॉलम बनाओ कि दिस इज द मैक्सिमम आई कैन अचीव, ठीक है, एंड दिस इज द मैक्सिमम आई कैन लूज। आप अब बिलीव करो कि वो मैक्सिमम आप जो अचीव करना चाहते हो वो कर लियो, और बिलीव करो जो मैक्सिमम लूज करना चाहते हो वो भी कर लियो। अब यहां से सोचो ये अचीव करके कि जो आप लूज करना चाहते हो वो कर लिए हो, क्या अब आपको ये अचीवमेंट वर्थ इट लग रहा है? अगर आपको वही वर्थ इट नहीं लग रहा है तो इसमें घुस क्यों रहे हो? प्लानिंग तो बाद की बात है, लोग ये सब करने के बाद फिर देखते हैं, अरे क्यों कर लिया यार, पर टाइम
0: और
1: निकल गया ना।
0: सबके सपने भी होते हैं ना कि हमें बहुत जल्दी बड़ा ब्रेक मिल जाएगा, आपने भी सोचा था।
1: हाँ।
0: खड़े हैं बाहर लाइन लगा के,
1: बताया उनकी गलती मेरी गलती।
0: हाँ, आपके केस में तो उन्हीं से गलती हो गई।
1: हाँ।
0: लेकिन अब कोई सोचे कि सीधा सिल्वर स्क्रीन पर ही आना है, तो आप क्या कहेंगे कि एक्टर को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? आज तक है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, थिएटर है, ओटीटी है, फिल्म है, सीरियल्स है, सो कहाँ से शुरुआत करे एक एक्टर? एडवर्टाइजमेंट्स भी हैं, लाइक यू नेम इट एंड दे हैव इट।
1: अब तो बहुत चीजें बहुत आसान हो गई है। अब तो कास्टिंग कॉल्स ना आप घर बैठे भी भेज सकते हो, आप अपने घर पे ही बना के भेज सकते हो, तो अब चीजें बहुत आसान हो गई है ये बनना। बट आपको एक्टिंग की शुरुआत करनी है ना, तो पहले खुद में करो,
0: घर पे एक्टिंग करो।
1: घर पे एक्टिंग करो, और अगर मम्मी पापा स्ट्रिक्ट है तो
0: अच्छा।
1: बाथरूम में के अंदर बंद करके आईने के सामने।
0: ओके तो यहाँ से शुरुआत कर देनी चाहिए,
1: शुरुआत कीजिए,
0: और फिर उसके बाद आप एक्सप्लोर करें।
1: हाँ।
0: कि थिएटर करना है,
1: थिएटर बात की बात है।
0: अच्छा।
1: पहले आईने के सामने अच्छा एक्टिंग कर पा रहे हो या नहीं,
0: और अच्छी एक्टिंग करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अभी से डेवलप कर सकते हैं। आपकी लैंग्वेज पे आपको वर्क करना है, आपके एक्सप्रेशन पे वर्क करना है। कहीं कहते हैं कि डांस सीखना बहुत जरूरी है, उसके आपकी बॉडी लैंग्वेज पर से बहुत एक अच्छा असर पड़ता है, आपके पॉस्चर पे आपकी ग्रेस आती है। सो कुछ ऐसा जो साथ साथ में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सब अपना होमवर्क कर कर ही आते हैं।
1: हाँ, मैं तो अभी कर रहा हूँ, मैं अभी डांस सीख रहा हूँ।
0: ओके कौन सी डांस फॉर्म सीख रहे हैं आप? बॉलीवुड?
1: बॉलीवुड बॉलीवुड सी, मैं डांस जो करता हूँ ना, तो मैं एक्सप्रेशन तो दे देता था,
0: राइट,
1: पर मेरा बॉडी वैसे नहीं मूव कर रहा था। सो अब सोच रहा हूँ उसे भी थोड़ा बेटर कर लूँ। सो आई एम लर्निंग बॉलीवुड, लर्न अ बिट ऑफ कॉन्टेम्प्ररी, थोड़ा बहुत सब कुछ सीख रहा हूँ डांस।
0: वेल दैट्स वेरी नाइस, और एक बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई आपके साथ। आपकी जर्नी के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा, और सच में ही फील हो रहा है कि सपने देखने चाहिए सच हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, मिरेकल्स डू हैपन। आपकी जिंदगी में भी हुए होंगे, राइट?
1: या मिरेकल्स डू हैपन, मैजिक डज हैपन, इट्स योर बिलीफ इन इट, इट्स योर बिलीफ इन इट विच मेक्स इट हैपन। जस्ट ये ध्यान रखना होगा कि वो होगा नहीं, आपका बिलीफ उस पे उसको होने होने पे मजबूर करेगा।
0: बिल्कुल, पेट दर्द है नहीं, लेकिन
1: हाँ,
0: अगर आपने सोच लिया कि
1: सोच
0: पेट
1: लिया।
0: दर्द हो रहा है,
1: हाँ,
0: तो पेट दर्द हो जाएगा।
1: हाँ, इतना सोच लो कि आप दवा भी खा सकते हो, और दवा खाने से
0: वो ठीक हो जाएगा।
1: हो
0: दैट्स अमेजिंग। आई एम श्योर कि जिस तरीके से आपने एक्टिंग सीखी और भी लोग सीखे, और अपने ऑफ कोर्स अपने आपने बोला, क्योंकि अपने एलिमेंट्स आएंगे तो वो अपने आप को और बेहतर कर पाएंगे। आपकी इस जर्नी के लिए आपको डेफिनेटली बधाई देना चाहती हूँ, और आप यहाँ आए, आपने टाइम दिया और इतने कैंडिड तरीके से अपनी बातें शेयर करी। थैंक यू सो मच, इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर, स्पेशली पप्पू प्रसाद पांडे जी।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू टू एवरी वन वॉचिंग, थैंक यू टू पीवी वेव्स, थैंक यू टू आकाशवाणी, एंड इट हैज बीन अ प्लेजर, इट्स एन ऑनर बींग हियर।
2: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। ये पॉडकास्ट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBN ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़,

छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत ही खूबसूरत गज़ल मिर्ज़ा गालिब ने जैसे दिल निकाल कर रख दिया इस गज़ल में। वैसे दोस्तों, यादों की बिना अपनी एक आदत होती है, ये तब नहीं आती जब हम उन्हें बुलाते हैं। यादें तो तब आती हैं जब हम उनके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, और फिर कुछ पल के लिए हम वर्तमान से निकल कर अपने ही अतीत में आ तैरते हैं। शायद इसी को यादों का जादू कहते हैं। हर इंसान के भीतर एक कमरा ऐसा ज़रूर होता है जहाँ वो किसी को आसानी से आने नहीं देता। यहाँ उसकी सबसे निजी यादें होती हैं, उसकी कमज़ोरियाँ होती हैं, उसकी अधूरी इच्छाएं होती हैं, और कभी कभी कोई एक शख्स जो है वो उस कमरे तक पहुँच ही जाता है। फिर वो रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं रहता, वो हमारे भीतर का एक खूबसूरत सा हिस्सा बन जाता है। एक बात बताइए, आपने कभी महसूस किया ऐसा?

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई।

0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ दोस्तों, ये है आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग महफिल अपनी दोस्त विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, तन्हाई हमेशा दुख नहीं देती, कभी कभी तन्हाई खुद से मिलने का सबसे अच्छा समय होता है। जब आसपास कोई आवाज नहीं होती तब सिर्फ भीतर की आवाज सुनाई देती है, और शायद यही हमें अपने कुछ पुराने जवाब भी मिल जाते हैं। आज की अगली गजल उसी खामोश तन्हाई के नाम।

दोस्तों, रात जो है ना वो कुछ और गहरी हो चली है, और इस वक्त शायद आप भी अपने भीतर किसी चेहरे को तलाश रहे होंगे, किसी ऐसे इंसान को जिससे बहुत कुछ कहना था लेकिन शायद कहा नहीं जा सका। जिंदगी में ना दोस्तों, कुछ बातें कह दी जाएं तो हल्की हो जाती हैं, मगर हाँ कुछ बातें जो ऐसी

0: होती हैं जो अनकही रहकर ही अपनी पूरी गहराई बचाए रखती हैं। इन्हीं अनकही बातों के नाम आज के रंगे महफिल का ये आखिरी नजराना आपके लिए, और इसके साथ ही अब विनीता बेदी को इजाजत दीजिए आज का रंगे महफिल यहीं समाप्त करने की। जल्दी फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, अच्छा लगेगा।
1: गजल गायकी का ये अंदाज अभी तक छाया हुआ है, कई नए नए फनकारों ने इस अंदाज को बरकरार रखा है जैसे छाया गंदा।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल है। 12 बजे हैं, आइए आप सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जोयेव ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान की ये चौथी यात्रा है।

नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। अभी तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल सरकार ने संकट की घड़ी में भारत की ओर से की गई तत्काल मदद के लिए सराहना की है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीक दल ने कल पनबिजली परियोजना की सुरंग का जायजा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में कहा कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल में गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश हो सकती है। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 12:02 और 44 सेकंड हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों कभी कभी जिंदगी में कोई एहसास बहुत धीरे धीरे हमारे करीब आता है और फिर एक पल ऐसा आता है जब लगता है अरे ये क्या हो गया, फिर कब किसी के नाम हो गया पता ही नहीं चला। कुछ ऐसा ही मासूम सा एहसास अपने भीतर समेटे है फिल्म स्वामी का ये खूबसूरत सा गीत। इसमें प्यार किसी बड़े वादे की तरह नहीं बल्कि सावन की हवा झूमते झूमके और मन में उठती मीठी सी बेचैनी की तरह महसूस होता है।

दोस्तों, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे उतरते हैं कि उनकी मौजूदगी के लिए उन्हें हर पल हमारे सामने होना ज़रूरी नहीं होता। वो दूर होकर भी दिल के बहुत पास रहते हैं। उनकी बातें याद आती हैं, उनकी मुस्कुराहट याद आती है, और कभी कभी तो यूं लगता है जैसे खामोशी में भी उनकी आवाज़ सुनाई दे रही हो। शायद सच्चे लगाव की यही खूबसूरती है। फासले चाहे जितने हों, दिल अपनेपन का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और इसी खूबसूरत एहसास को आवाज़ देता है फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत, जिसे अपनी खूबसूरत ही आवाज़ में गाया है किशोर कुमार ने। तो आइए आप और हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5।

रेनबो पर। दोस्तों, कभी किसी को देखते ही दिल में एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे उस एक चेहरे में दिन भर की सारी थकान और सुकून छुपा हो। कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक नजर ही बहुत कुछ कह जाती है। प्यार शायद यही होता है, किसी को देखना और अचानक दुनिया थोड़ी खूबसूरत लगने लगे, उसकी मुस्कुराहट में अपनी खुशी ढूंढ लेना और उसकी मौजूदगी को अपने दिल का सबसे प्यारा हिस्सा मान लेना। तो आज की इस खूबसूरत शाम में सुनते हैं एक ऐसा ही मासूम सा नगमा जिसमें मोहब्बत आंखों से होकर दिल तक पहुंचती है, और ये गीत है फिल्म तुम्हारे लिए का आवाज़, लता मंगेशकर की।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि दर्द भी जिंदगी का एक रंग है, और कभी कभी यही दर्द हमें अपने भीतर झांकना, अपनी भावनाओं को समझना और फिर से मुस्कुराना सिखाता है, क्योंकि हर दर्द अपने साथ एक कहानी लाता है और हर कहानी में आगे बढ़ने की एक वजह भी छिपी होती है। तो आइए संगीत की इसी भावुक दुनिया में कुछ पल ठहरते हैं और सुनते हैं फिल्म कर्ज का ये खूबसूरत नगमा, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने

बारह बजकर 31 मिनट और 23 सेकंड हुए हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं इस वक्त जीरो आर शो मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। कहते हैं ना, प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उसे आने के लिए कोई दस्तक नहीं चाहिए, वो बस आता है और दिल को एहसास करा देता है कि अब किसी की मौजूदगी हमारी खुशियों का हिस्सा बन चुकी है। तो आइए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है शंकर हुसैन।

कुछ पल ऐसे होते हैं जब दिल कहता है छोड़िए सारी फिक्र, आज बस इस पल की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। तो चलिए थोड़ी सी फुर्सत चुराते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं और संगीत के इस रंगीन सफर में शामिल हो जाते हैं। इस खूबसूरत से गीत के साथ फिल्म कुर्बानी का ये गीत है, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

जिंदगी भी एक खूबसूरत बाग की तरह है, जहां हर मौसम अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। कभी फूल खिलते हैं, कभी पत्ते झड़ते हैं, और कभी हवाएं पुरानी यादों को छूकर निकल जाती है। लेकिन जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि हर बदलते मौसम के बीच हम जीना, मुस्कुराना और उम्मीद रखना ना छोड़ें। जो पल आज हमारे पास है उसे पूरी शिद्दत से महसूस करें, क्योंकि गुजरता हुआ वक्त लौट कर नहीं आता। तो आइए आपको सुनवाते हैं शर्मीली फिल्म का ये गीत, आवाज़ किशोर कुमार की।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की खूबसूरत बातें किसी शोर में नहीं बल्कि

उस खामोशी में सुनाई देती है जहां हम बस आसमान को देखते हैं और अपने मन की सारी बातें उससे कहने लगते हैं। नीला आसमान, चांदनी रात और दिल में किसी अपने की याद, बस इतना ही तो चाहिए एक खूबसूरत एहसास को जन्म देने के लिए।

और दोस्तों, चलते चलते बस यही कहेंगे कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच शायद यही है कि हम आने वाले कल को जान नहीं सकते और बीता हुआ कल वापस नहीं ला सकते। हमारे पास तो बस ये पल जो अभी हमारे सामने हैं, इसलिए जिंदगी को सिर्फ आने वाले कल की चिंता में नहीं बल्कि आज की खूबसूरती में जीना चाहिए। छोटी सी खुशी हो, अपनों का साथ हो या कोई प्यारी सी याद, हर पल को महसूस करना ही तो जिंदगी का हुनर है। तो आज कुछ पल ठहरिए, मुस्कुराइए और इस पल को पूरी तरह से जी लीजिए। तो कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले के गाया फिल्म वक्त का ये गीत। और अब मुझे यानी अर्चना बिसारिया को जीरो आर शो समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

एक बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान की ये 4थी यात्रा है। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। अभी तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल सरकार ने संकट की घड़ी में भारत की ओर से की गई तत्काल मदद के लिए सराहना की है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीक दल ने कल पनबिजली परियोजना की सुरंग का जायजा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में कहा कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई

योजना के अंतर्गत लाया गया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश हो सकती है। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने की प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:02 और 42 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुहानी रात। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया और इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके

भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

दो बजे हैं एफएम रेनबो पर, आइए सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। आज उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शफकत मिर्जोयेव के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान की ये चौथी यात्रा है। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 275 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। अभी तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल सरकार ने संकट की घड़ी में भारत की ओर से की गई तत्काल मदद के लिए सराहना की है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीक की दल ने कल पनबिजली परियोजना की सुरंग का जायजा लिया। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक सफल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश हो सकती है। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी रंगपुर में हुए नरसंहार के बारे में पुलिस की बातों पर शक जताते हुए एक सिविल सोसाइटी ग्रुप ने हिंदू परिवार की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं और अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 2:02 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने। आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

तीन बजे हैं, आइए अब सुनते हैं एफएम रेनबो पर इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। आज उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शफकत मिर्जियोयेफ के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान की ये चौथी यात्रा है। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 275 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। अभी तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल सरकार ने संकट की घड़ी में भारत की ओर से की गई तत्काल मदद के लिए सराहना की है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीकी दल ने कल पनबिजली परियोजना की सुरंग का जायजा लिया। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर में पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश हो सकती है। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी रंगपुर में हुए नरसंहार के बारे में पुलिस की बातों पर शक जताते हुए एक सिविल सोसाइटी ग्रुप ने हिंदू परिवार की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की। यूक्रेन के बूचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं और अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को समाप्त करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: 3:02 और 51 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। आज उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की उज़्बेकिस्तान की ये चौथी यात्रा है। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क में कहा कि जो हिंदू ये मानता है कि भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, वह हिंदू नहीं रह जाता। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 275 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। अभी तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल सरकार ने संकट की घड़ी में भारत की ओर से की गई तत्काल मदद के लिए सराहना की है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीकी दल ने कल पनबिजली परियोजना की सुरंग का जायजा लिया। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश हो सकती है। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी रंगपुर में हुए नरसंहार के बारे में पुलिस की बातों पर शक जताते हुए एक सिविल सोसाइटी ग्रुप ने हिंदू परिवार की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं कार्यक्रम सारेगामा। मैं हूं आपके साथ सुप्रिया।

0: कमल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रवि

परिवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।